0: माध्यम से फर्ज कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है, साइटेड बच्चा है, किताब को पेज वाइज, हेडिंग वाइज, सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब, मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115, तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर, जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे, उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो, या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी, तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका, मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है, तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि पाँचवें नंबर के कैसेट में है कि आठवें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है, या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने, क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
1: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया, और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
0: जी, उनका जो
1: हर क्षेत्र में,
0: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है, बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो, उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना, अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं, और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में, वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में, अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को, और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हीलचेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता। सर, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके। तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के 2nd Thursday जो होता है, उसमें विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ऑक्सीजन्स होते हैं, इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुँच पाए कि नंबर एक कि दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात ये कि जो लोग साइट लूज कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज़ होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज़ होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तुम बिना आके भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
0: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है क्योंकि टच स्क्रीन पे टाइप करके नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता
0: जी
1: या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करे, वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाएं कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाए।
0: सर आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी जी थैंक यू।
0: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बेरेनिका, वह रेगिस्तानी एम्पोरियम जहां रोमन सिक्कों का मिलन भारतीय रेशम से हुआ, मिस्र के तपते पूर्वी रेगिस्तान में जहां लाल रेत और लाल सागर का गहरा नीला पानी मिलते हैं, कभी एक ऐसा शहर बसा था जिसने अपने उजाड़ परिवेश को चुनौती दी थी। यह था बेरेनिका, एक ऐसी जगह जहां रोम का वैभव पूर्व के रहस्यों से मिलता था। 275 ईसा पूर्व में टॉलेमी द्वितीय द्वारा स्थापित और उनकी मां के नाम पर रखा गया यह शहर विलासिता के केंद्र के रूप में नहीं बल्कि एक सैन्य चौकी के रूप में शुरू हुआ था, जिसे अफ्रीकी युद्ध हाथियों को मिस्र लाने के लिए बनाया गया था। 30 ईसा पूर्व में मिस्र पर रोमन विजय के बाद यह दूरस्थ बंदरगाह प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय एम्पोरियम में से एक में बदल गया। इस शहर के अविश्वसनीय उत्थान की कुंजी यूनानी हिप्पुल्स जैसे नाविकों द्वारा मानसून की हवाओं की खोज में छिपी थी, जिसने जहाजों को तट के किनारे रेंगने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बंदरगाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। घाट उन विशाल जहाजों के आगमन से हलचल में रहे होंगे जो भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की सवारी करके अभी अभी पहुंचे थे। रोमन व्यापारी जिनकी जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थीं, लोबान और लोहबान की महक से भरी हवाओं के बीच घूमते थे। यहां रोमन अभिजात वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित विलासिता चीन से आने वाला चमकता रेशम उस शाही मुद्रा के बदले खरीदा जाता था जिसने साम्राज्य की वैश्विक पहुंच को ईंधन दिया था। बेरेनिका के अब छोड़े जा चुके स्थल पर मिले खजानों की विविधता अभूतपूर्व जुड़ाव की कहानी बयान करती है। पुरातत्वेदों ने भारत से बड़ी मात्रा में आई सागौन की लकड़ी बरामद की है, जिसे संभवतः समुद्र पार करने वाले जहाजों से दोबारा उपयोग के लिए निकाला गया था। इसके साथ ही सुदूर पूर्वी जावा के कांच के मनके भी मिले हैं। उन्हें ऐसे एम्फोरा यानी मिट्टी के पात्र मिले जिनमें कभी भूमध्य सागरीय शराब और जैतून का तेल लाया गया था, जो विदेशी व्यापारियों और बस्तियों की मेजों के लिए नियत थे। शायद सबसे जीवंत खोज 16 पाउंड भारतीय काली मिर्च से भरा एक जार था, एक ऐसा पुरातात्विक खजाना जो प्राचीन मसाला व्यापार के पैमाने को रेखांकित करता है। लेकिन बेरेनिका केवल माल ढोने की जगह से कहीं अधिक थी। यह एक जीवंत बहुजातीय संस्कृतियों का संगम था। इसकी रेगिस्तानी सड़कों पर चलते हुए कोई भी विभिन्न भाषाओं का एक संगीत सुन सकता था। स्थानीय पत्थरों पर खुदे हुए भित्ति लेख आम आदमी के साहित्य को दर्शाते हैं, जिसमें दक्षिण अरबियों, सीरियाई रेगिस्तान के पलमायरेन, इथियोपिया के ऊंचे इलाकों के एक्सुमाइटस और भारत के दक्षिणी छोर के तमिल भाषी लोगों की उपस्थिति का पता चलता है। इस विविधता के बीच देवी एफ्रोडाइट की मूर्तियां एक परिचित ग्रीको रोमन सुकून के रूप में खड़ी थीं, एक ऐसे शहर में जहां दुनिया की संस्कृतियों का मिलन होता था। इस रेगिस्तानी एम्पोरियम ने साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया इतिहास की किताबों के सुझावों की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक थी। बेरेनिका वह अनिवार्य प्रवेश द्वार था जहां लाल सागर एक विशाल बहुकेंद्रित ऐतिहासिक इकाई में खुलता था जो पूर्व में हजारों मील तक फैली हुई थी। यह उस समय का प्रमाण है जब मिस्र की रेत का एक सुदूर टुकड़ा एक परस्पर जुड़ी दुनिया की धड़कन के रूप में कार्य करता था, जो मौसमी हवाओं और विनिमय की साझा मानवीय इच्छा से एकजुट था।
0: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर यह है रेडियो आजाद हिंद। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम भारत विभूति के इस अंक में एक ऐसे महापुरुष की जीवन यात्रा के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सुखद और समृद्ध जीवन त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की सेवा को अपना धर्म चुना। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिखाया कि मनुष्यता की सच्ची सेवा में ही जीवन का वास्तविक अर्थ छिपा है। हम आज भारत विभूति में बात करने जा रहे हैं पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, यानी बाबा आमटे की। आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं स्वाति और मेरे साथ है मेरे सहयोगी
2: दीपेश।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, बात करते हैं पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों को केवल दवाई नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया अर्थ दिया, जिन्होंने समाज की सोच बदली और घृणा को करुणा में बदल दिया।
3: जिनके लिए हर मनुष्य, चाहे वह कितना भी रोगग्रस्त या विकलांग हो, सम्मान का पात्र था। जिन्होंने यह साबित किया कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प पूरे समाज को बदल सकता है। जिनका जीवन प्रेम, करुणा और सेवा की एक अमर कहानी है। आज हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे, यानी बाबा आमटे की जीवन यात्रा के बारे में। तो आइए उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों को जानें और उनसे प्रेरणा लें। तो आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा।
0: श्रोताओं, भारतीय समाज सेवा के इतिहास में बाबा आमटे का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने सुखद और समृद्ध जीवन को त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित और तिरस्कृत वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया। कुष्ठ रोगियों, आदिवासियों और विकलांग लोगों के लिए उनका कार्य न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बना। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और करुणा से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
3: मुरलीधर देवीदास आमटे जी का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगन घाट नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। वे एक अत्यंत संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता देवीदास आमटे ब्रिटिश सरकार के अधीन एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। परिवार हिंगन घाट के सबसे प्रभावशाली और धनी परिवारों में से एक था। बचपन में मुरलीधर को जीवन की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उनका पालन पोषण एक राजसी वातावरण में हुआ था।
0: मुरलीधर के घर में नौकर चाकर थे, अच्छे वाहन थे और हर तरह की विलासिता की चीजें उपलब्ध थी। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। परिवार में शिक्षा और संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाता था। घर में धार्मिक वातावरण था, लेकिन साथ ही आधुनिक विचारधारा को भी स्थान मिला था।
3: बालक मुरलीधर अत्यंत प्रतिभाशाली और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्हें बचपन से ही साहसिक कार्यों में रुचि थी। वे घुड़सवारी करते थे, शिकार किया करते थे और अन्य खेलों में भी निपुण थे। उन्हें तैराकी और कुश्ती में भी रुचि थी। उनका बचपन विलासिता और आराम से बीता, जहां उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। परिवार में उन्हें प्यार से बाबा के नाम से पुकारा जाता था, जो बाद में उनकी पहचान और उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गया।
0: बचपन में बाबा आमटे को सांपों में विशेष रुचि थी। ये रुचि केवल एक शौक भर नहीं था बल्कि एक जुनून था। वो सांपों को पकड़ने और उनके बारे में जानने में घंटों बिता दिया करते। वे जंगलों में जाकर विभिन्न तरह के सांपों को पकड़ते और उनका अध्ययन करते। इस अनोखे शौक ने उन्हें निडर और अत्यंत साहसी बनाया। जो डर दूसरे बच्चों में होता था, वो बालक मुरलीधर में नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी और उनके हर शौक को प्रोत्साहित किया।
2: उन्होंने कभी अपने बेटे को रोका टोका नहीं, बल्कि उसके साहस की हमेशा प्रशंसा ही की। बचपन के इन अनुभवों ने बाबा आमटे के व्यक्तित्व को गढ़ा। सांपों के साथ काम करने से उन्हें ये सीख मिली कि जिन चीजों से लोग डरते हैं वो वास्तव में उतनी भयानक नहीं होती। ये सीख बाद में उनके जीवन में बहुत काम आई जब उन्होंने कुष्ठ रोगियों के साथ काम करना शुरू किया।
3: मुरलीधर आमटे की प्रारंभिक शिक्षा हिंगन घाट के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे और हर कक्षा में प्रथम आते थे। शिक्षकों को उनसे बहुत उम्मीदें थी। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी और वे किसी भी विषय को शीघ्रता से समझ लेते थे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के प्रतिष्ठित मॉरिस कॉलेज में दाखिला लिया। नागपुर उस समय मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था और वहां शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं थी। कॉलेज में भी वे एक मेधावी छात्र के रूप में जाने गए। वे न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। उन्होंने कॉलेज में नाटकों में भाग लिया, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और साहित्यिक गतिविधियों में भी रुचि दिखाई।
2: कॉलेज के दिनों में युवा मुरलीधर एक शानदार जीवन शैली जी रहे थे। उनके पास अच्छे कपड़े थे, महंगे शौक थे और वो अपने मित्रों के बीच लोकप्रिय भी थे। वे अक्सर पार्टियों में जाते, सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते। उनके पास एक कार भी थी जो उस समय बहुत ही बड़ी बात थी। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने कला स्नातक की डिग्री अच्छे अंकों से प्राप्त की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। वकालत उस समय बहुत ही प्रतिष्ठित पेशा हुआ करता था। परिवार भी चाहता था कि मुरलीधर एक सफल वकील बने। उन्होंने कानून की पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1942 में वकालत की डिग्री हासिल की। उसी साल उन्होंने वर्धा में अपनी वकालत की प्रैक्टिस भी शुरू की।
3: बाबा आमटे की प्रतिभा, वक्तव्य कला और कानूनी ज्ञान के कारण वे शीघ्र ही एक सफल और लोकप्रिय वकील बन गए। उनकी आय बहुत अच्छी थी और वे आरामदायक जीवन जी रहे थे। उनके मुवक्किलों में धनी और प्रभावशाली लोग होते थे। वे अदालत में अपनी दलीलों के लिए जाने जाते थे। लेकिन युवावस्था में ही बाबा आमटे के मन में देश और समाज के प्रति चिंता जागने लगी थी। वे उस समय चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से अत्यधिक प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का दर्शन और उनकी विचारधारा ने युवा मुरलीधर के मन पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी का सत्य, अहिंसा और सेवा का संदेश उन्हें बहुत पसंद आया।
2: गांधी जी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में रह रहे थे जो बाबा आमटे के घर से ज्यादा दूर नहीं था। बाबा आमटे ने कई बार सेवाग्राम जाकर गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी के सरल जीवन और उच्च विचारों ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया। गांधी जी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा। बाबा आमटे ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया। उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कानूनी मदद भी की। 1942 के भारत छोड़ आंदोलन में उनकी सक्रिय हिस्सेदारी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने कई माह बिताए। जेल में रहते हुए उनकी मुलाकात विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। इन महान व्यक्तियों के विचारों और जीवन शैली ने युवा मुरलीधर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा।
3: जेल से बाहर आने के बाद भी बाबा आमटे की वकालत चलती रही, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। वे महसूस करते थे कि केवल धन कमाना और आरामदायक जीवन जीना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान देना है। इसी बीच 1946 में बाबा आमटे का विवाह साधना ताई मोघे से हुआ। साधना ताई एक असाधारण महिला थी। वे भी एक संपन्न परिवार से थी और उन्होंने आगरा के प्रतिष्ठित सेंट जॉन्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उस समय महिलाओं का इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक असाधारण बात थी। साधना ताई प्रगतिशील विचारों वाली और समाज सेवा में रुचि रखने वाली महिला थी।
2: विवाह के बाद साधना ताई ने अपने पति के हर निर्णय में उनका साथ दिया। वो न केवल एक पत्नी थी बल्कि बाबा आमटे की सबसे बड़ी सहयोगी और मित्र भी बनी। उनका विवाह एक आदर्श साझेदारी का उदाहरण था। साधना ताई ने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने पति के मिशन के लिए समर्पित कर दिया। विवाह के समय बाबा आमटे का जीवन बहुत आरामदायक था। वो एक सफल वकील थे, उनकी अच्छी कमाई थी, उनके पास एक बड़ा मकान था, कार थी और सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा करते। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा आमटे के मन में एक अजीबोगरीब सी बेचैनी थी। वो महसूस करते कि जीवन में कुछ कमी है, कोई बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।
3: 1945 की एक रात की घटना ने बाबा आमटे के जीवन की दिशा ही बदल दी। वर्धा की एक सुनसान सड़क पर रात के समय वे गाड़ी चला रहे थे। अचानक उनकी कार की रोशनी में एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। एक मनुष्य सड़क के किनारे असहाय पड़ा था। पास जाने पर पता चला कि वह एक कुष्ठ रोगी था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, उसकी उंगलियां गल चुकी थी, पूरा शरीर सड़ रहा था और असहनीय दुर्गंध आ रही थी। उस अंधेरी रात में आवारा कुत्ते उसके घाव को चाट रखे थे और वह असहाय व्यक्ति चिल्लाने की शक्ति भी खो चुका था। यह दृश्य देखकर बाबा आमटे के रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो उन्हें घृणा और भय हुआ, उनका मन हुआ कि वहां से भाग जाए। लेकिन फिर उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं इतना कायर हूं कि एक मरते हुए मनुष्य की मदद नहीं कर सकता? क्या मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान, मेरा साहस सब बेकार है?
2: वो कार से उतरे और उस व्यक्ति के पास गए। पहली बार उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को इतने करीब से देखा था। वो दृश्य इतना भयावह था, लेकिन बाबा आमटे ने अपने डर पर विजय पाई। उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया, अपनी कार में बिठाया और उसे नजदीकी अस्पताल तक ले गए। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उस कुष्ठ रोगी को भर्ती करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोगियों के लिए अलग अस्पताल होते हैं। कोई भी उस व्यक्ति को छूना नहीं चाहता था, सभी उससे दूर भागते थे, जैसे वो कोई जानवर हो, इंसान नहीं।
3: वो रात बाबा आमटे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात साबित हुई। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में कुष्ठ रोगियों के प्रति कितनी क्रूरता और घृणा है। ये लोग न केवल एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, बल्कि समाज द्वारा पूरी तरह से त्याग दिए गए हैं। उन्हें न इलाज मिलता है, न सम्मान, न प्यार, वे जीते जी मर चुके हैं। उस रात घर लौटकर बाबा आमटे को नींद नहीं आई। वे सारी रात सोचते रहे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना जीवन इन उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों की सेवा में लगाएंगे। उन्होंने साधना ताई से अपने विचार साझा किए। साधना ताई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पति के इस निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहेंगी।
2: 1946 से 1949 के बीच बाबा आमटे ने कुष्ठ सेवा की शुरुआत की। उन्होंने अपने निर्णय के बाद सबसे पहले कुष्ठ रोग के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि बिना पूरी जानकारी के वो इन रोगियों की सही सेवा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता, के प्रसिद्ध स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में जाकर कुष्ठ रोग का विधिवत अध्ययन किया। कलकत्ता में रहते हुए बाबा आमटे ने कई महीने कुष्ठ रोग के बारे में सीखा। उन्होंने जाना कि कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। ये रोग संक्रामक तो है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग समझते हैं। लंबे समय तक और निकट संपर्क से ही यह फैलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये रोग पूरी तरह से इलाज योग्य है। सही दवाइयों और देखभाल से कुष्ठ रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं।
3: बाबा आमटे ने यह भी सीखा कि कुष्ठ रोग में त्वचा और नसें प्रभावित होती हैं। इसके कारण रोगी को अपने हाथ पैरों में संवेदना महसूस नहीं होती। छोटे छोटे घाव और चोटें, जिन्हें रोगी महसूस नहीं कर पाता, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और गंभीर रूप ले लेती है। उंगलियां और अंग सड़ने लगते हैं, लेकिन सही समय पर इलाज से इसे रोका जा सकता है। वापस वर्धा लौटने के बाद बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों की सेवा का काम शुरू कर दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। पहला सवाल यह था कि रोगियों को कहां से लाया जाए। कुष्ठ रोगी जो समाज से छिपते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। बाबा आमटे ने शहर के बाहरी इलाकों में जाना शुरू किया। वे उन जगहों पर जाते थे जहां कुष्ठ रोगी छिप कर रहते थे। उन्हें विश्वास दिलाते थे कि वे उनका इलाज करेंगे और उनकी मदद करेंगे। धीरे धीरे कुछ रोगी उनके पास आने लगे।
2: बाबा आमटे ने अपने घर में ही एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। वो अपने हाथों से रोगियों के घावों को साफ किया करते, पट्टियां बदलते और उन्हें दवाइयां देते। प्रारंभ में उन्हें बहुत घृणा और भय होता था। घावों की दुर्गंध से उनका मन मिचलाता था। सड़े हुए मांस को छूते समय उनके हाथ पैर कांप जाते। रात को सोते समय वो सपनों में वही दृश्य देखते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने इस भय को और घृणा को खुद से जीत लिया। एक दिन बाबा आमटे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने एक कुष्ठ रोगी तुलसीराम को अपने घर में रहने के लिए बुलाया। तुलसीराम की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसकी उंगलियां गल चुकी थी और पूरे शरीर में घाव थे। बाबा आमटे ने उसे अपने घर में रखा और उसकी नियमित सेवा की। वो रोज उसके घावों को साफ किया करते, दवाई लगाते और उसे खाना भी अपने हाथों से खिलाते।
3: साधना ताई ने भी इस काम में पूरा सहयोग दिया। उन्होंने तुलसीराम के लिए खाना बनाया, उसके कपड़े धोए और उसकी देखभाल की। एक संपन्न घर की पढ़ी लिखी महिला का इस तरह एक कुष्ठ रोगी की सेवा करना उस समय अकल्पनीय था। धीरे धीरे तुलसीराम की हालत में सुधार आने लगा। उसके घाव भरने लगे, रोग का प्रसार रुक गया। कुछ महीनों में वह काफी स्वस्थ हो गया। यह बाबा आमटे के लिए एक बड़ी सफलता थी। इस घटना ने उन्हें विश्वास दिलाया कि कुष्ठ रोगियों की सेवा संभव है और वे भी सामान्य जीवन जी सकते हैं।
2: लेकिन समाज में इस कार्य का भारी विरोध हुआ। पड़ोसी बाबा आमटे से नाराज हो गए। उन्हें डर था कि कुष्ठ रोग उन तक भी फैल जाएगा। लोग बाबा आमटे और उनके परिवार से दूर रहने लगे। रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें पागल तक करार दे दिया। ये कहा गया कि एक सफल वकील अपना करियर और जीवन बर्बाद कर रहा है। उनकी वकालत पर भी इसका असर पड़ा। कुछ मुवक्किलों ने उनसे संबंध तोड़ लिया। लोग कहने लगे कि जो व्यक्ति कुष्ठ रोगियों को छूता है उसके पास कैसे जाया जाए। बाबा आमटे की आय में अब कमी आने लगी थी।
3: लेकिन बाबा आमटे और साधना ताई ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना काम जारी रखा। धीरे धीरे और रोगी उनके पास आने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि केवल घर में छोटे से क्लिनिक से काम नहीं चलेगा। कुछ रोगियों के लिए एक बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है, जहां वे रह सकें, इलाज करा सकें और सम्मान से जी सकें। फिर स्थापना हुई आनंद वन की। 1949 से 1960 के बीच बाबा आमटे ने अपने सपने को साकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने वर्धा जिले के वरूरा तहसील के पास चंद्रपुर में 264 एकड़ जमीन खरीदी और वहां आनंद वन यानी आनंद का वन इसकी स्थापना की। यह नाम भी बहुत सोच समझ कर चुना गया था। आनंद वन, जहां दुख और पीड़ा से भरे जीवन को आनंद मिले।
2: यह जमीन खरीदने के लिए बाबा आमटे ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। उन्होंने अपना मकान, कार और सभी कीमती सामान बेच दिए। उन्होंने अपनी सफल वकालत को पूरी तरह से छोड़ दिया और एक संपन्न जीवन से वे सब कुछ त्याग कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ चले। प्रारंभ में जो जमीन खरीदी गई थी वो पूरी तरह से बंजर थी। वहाँ कुछ भी नहीं था, न पेड़, न पानी, न कोई इमारत, केवल सूखी बंजर जमीन जिस पर कांटेदार झाड़ियाँ उगी थी। कोई भी इस जमीन पर खेती करने का साहस नहीं करता था, लेकिन बाबा आमटे ने इसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया।
3: साधना ताई और उनके दो छोटे बेटे प्रकाश और विकास, ये भी उनके साथ आनंद वन आ गए। साधना ताई ने अपने आरामदायक घर, सभी सुविधाओं और समाज की प्रतिष्ठा को छोड़कर इस बंजर जमीन पर रहने का निर्णय लिया। बच्चे भी छोटी उम्र से ही इस कठिन जीवन में शामिल हो गए। शुरुआत में परिस्थितियां बहुत कठिन थी। कोई घर नहीं था, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। पानी की बहुत समस्या थी, खाने पीने की भी दिक्कतें थी। रात को जंगली जानवर आते थे और डर पैदा करते थे। मच्छरों और अन्य कीड़ों का भी प्रकोप था।
2: बाबा आमटे ने पहले कुछ कुष्ठ रोगियों को आनंद वन में बुलाया। शुरू में केवल 6 रोगी ही आए। इन रोगियों की स्थिति बहुत ही खराब थी। कुछ तो चल भी नहीं पाते थे, कुछ की आंखें खराब हो चुकी थी, लेकिन बाबा आमटे का दृष्टिकोण कुछ अलग था। वो इन रोगियों को केवल मरीज के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें सक्षम व्यक्ति ही मानते थे। आनंद वन में बाबा आमटे का दर्शन बहुत स्पष्ट था। कार्य ही पूजा है और भिक्षा नहीं, कार्य चाहिए। उन्होंने कुष्ठ रोगियों को बिस्तर पर लेटे रहने के बजाय काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भीख नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें काम का अवसर देना चाहता हूँ। तुम भी काम कर सकते हो। तुम्हारे हाथ पैर भले ही कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है।
3: यह विचार क्रांतिकारी था। उस समय लोग कुष्ठ रोगियों को केवल दान और भीख का पात्र समझते थे, लेकिन बाबा आमटे ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। सबसे पहला काम था जमीन को उपजाऊ बनाना। बाबा आमटे ने स्वयं कुदाल उठाई और खेत जोतना शुरू कर दिया। वे सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे। साधनाताई भी उनके साथ काम करती थी। कुष्ठ रोगियों को भी काम में लगाया गया। जो चल सकते थे वो खेतों में काम करते थे, जो हाथों से काम नहीं कर सकते थे उन्हें दूसरे काम दिए गए।
2: धीरे धीरे बंजर जमीन हरी भरी होने लगी। पेड़ लगाए गए, कुआं खोदा गया, छोटे छोटे घर बनाए गए, खेतों में सब्जियां उगाई गईं, पशुपालन शुरू हुआ। हर रोगी को उसकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाता और उसके लिए मजदूरी भी मिलती। बाबा आमटे ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने आनंद वन में एक स्कूल खोला। यहाँ कुष्ठ रोगियों के बच्चे पढ़ते थे और साथ ही आसपास के गांवों के बच्चे भी। यह समाज में एक बड़ा बदलाव था। पहली बार कुष्ठ रोगियों के बच्चे सामान्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे।
3: आनंद वन में अस्पताल की सुविधा भी विकसित की गई। यहाँ कुष्ठ रोग के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी इलाज होता था। कई रोगी जो पूरी तरह निराश हो चुके थे यहाँ आकर नया जीवन पाने लगे। उनके घाव भरने लगे, रोग का प्रसार रुक गया और वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। आनंद वन में विभिन्न कार्यशालाएं भी स्थापित की गई। यहाँ बुनाई, चमड़े का काम, कृषि उपकरण बनाना और अन्य कई तरह के काम होते थे। कुष्ठ रोगी इन कामों में लगे थे और अपनी रोजी रोटी कमा रखे थे। यह उनके लिए आत्मसम्मान की बात थी। वे अब भिखारी नहीं रहे, बल्कि कमाने वाले व्यक्ति बन गए थे। धीरे धीरे आनंद वन की ख्याति फैलने लगी। देश के विभिन्न हिस्सों से कुष्ठ रोगी यहां आने लगे। 1950 के दशक के अंत तक आनंद वन में सैकड़ों रोगी रह रहे थे। यह एक समृद्ध और आत्मनिर्भर समुदाय बन गया था।
2: बाबा आमटे ने अपने कार्य को केवल कुष्ठ रोगियों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने विकलांग लोगों, अंधों और अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए भी काम किया। आनंद वन में नेत्रहीनों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की गईं। 1973 में उन्होंने गढ़चिरौली जिले के हेमलक्सा में एक नई परियोजना की शुरुआत की।
3: उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया। बाबा आमटे ने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे बड़े बांधों के निर्माण से होने वाले विस्थापन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि विकास के नाम पर गरीब लोगों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
2: बाबा आमटे को कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। बाबा आमटे के अथक सेवा कार्यों के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1986 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से उन्हें सम्मानित किया गया।
3: 1985 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी में दिया गया। इस पुरस्कार की राशि उन्होंने आनंद वन के विकास में लगा दी। 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार और अन्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। इन सभी पुरस्कारों के बावजूद बाबा आमटे अत्यंत विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। उन्होंने कभी भी इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं माना, बल्कि उन लोगों के प्रति समाज की जिम्मेदारी का प्रतीक माना जिनकी वे सेवा कर रहे थे।
2: जीवन के अपने अंतिम वर्षों में बाबा आमटे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य बीमारियों ने जकड़ लिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या थी और वो बिस्तर पर ही रहने लगे। चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन बीमारी ने भी उनके जज्बे को कमजोर नहीं होने दिया। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी आनंद वन और हेमलक्सा के कार्यों का संचालन किया करते। वे अपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते रहे।
3: साधना ताई ने अंत तक अपने पति की सेवा की। उनके दोनों बेटे प्रकाश और विकास ने भी अपने माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाया। प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी डॉक्टर मंदाकिनी आमटे ने हेमलक्सा में आदिवासियों की सेवा को जारी रखा। विकास आमटे ने आनंद वन का संचालन संभाला। 9 फरवरी 2008 को आनंद वन में बाबा आमटे ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका निधन पूरे देश के लिए बड़ी क्षति था। भारत ने अपना एक महान समाज सेवक खो दिया।
2: उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने भाग लिया। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन सबसे अधिक दुख उन हजारों लोगों को था जिनके जीवन में बाबा आमटे ने उजाला भरा था। बाबा आमटे का जीवन दर्शन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। उनके कुछ प्रमुख विचार और सिद्धांत इस तरह थे।
3: मैं एक मनुष्य की जान बचाना नहीं चाहता, मैं एक मनुष्य को जीवन देना चाहता हूँ।
2: ये उनका मूल मंत्र था। वो केवल रोगियों का इलाज नहीं करते थे, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर देते थे।
3: कर्म ही पूजा है, उनका मानना था कि मनुष्य को काम करना चाहिए। काम से ही मनुष्य को आत्मसम्मान और जीवन का उद्देश्य मिलता है। भिक्षा नहीं, कार्य चाहिए। विदान और भिक्षा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मनुष्य को भीख नहीं बल्कि काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। समानता और सामाजिक न्याय, बाबा आमटे ने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को नकारा। आनंद वन में सभी को समान अवसर और सम्मान मिलता था।
2: बाबा आमटे पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण में विश्वास रखते थे। हेमलक्सा में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण पर खासा ध्यान दिया। बाबा आमटे की मृत्यु के बाद भी उनका काम जारी है। आनंद वन और हेमलक्सा आज भी सक्रिय है और हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रकाश आमटे और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे ने हेमलक्सा में अपने माता पिता के काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हें भी अपने सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी सम्मिलित है।
3: बाबा आमटे के जीवन पर कई किताबें लिखी गई, उन पर वृत्त चित्र बनाए गए। उनकी जीवनी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। आनंद वन आज भी कुष्ठ पुनर्वास का एक आदर्श मॉडल है, जहां विकलांगों के लिए विशेष उपकरण बनाए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं हैं। यहां के निवासी आत्मनिर्भर और गौरवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। बाबा आमटे का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने अपने सुखद जीवन को त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की सेवा की। उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और समर्पण समाज में महान परिवर्तन ला सकता है।
2: बाबा आमटे न केवल कुष्ठ रोगियों का इलाज करते थे, बल्कि उन्हें जीवन जीने का एक नया अर्थ भी देते। उन्होंने समाज की सोच बदली, कुष्ठ रोगियों के प्रति घृणा और भय को भी समाप्त किया। उन्होंने बताया कि ये लोग भी समाज के उपयोगी सदस्य हो सकते हैं। उनका जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है। आज भी समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो उपेक्षित और तिरस्कृत हैं। बाबा आमटे का जीवन हमें सिखाता है कि हमें इन वर्गों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देना चाहिए।
3: बाबा आमटे जी ने कहा था, मैं केवल एक मोमबत्ती जला रहा हूँ। यदि हर कोई अपनी एक मोमबत्ती जलाए तो पूरा संसार रोशन हो सकता है। यही उनका संदेश था और यही उनकी विरासत है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाना।
2: तो श्रोताओं, इसी प्रेरक संदेश के साथ हमारा ये कार्यक्रम भारत विभूति अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हम बात कर रहे थे पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, यानी बाबा आमटे की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौर, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, वाचन कर रहे थे मैं यानी स्वाति
3: और मैं दीपेश,
2: लेखन था अखिलेश कुमार वर्मा का। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

पद्मश्री गुंदेचा बंधुओं द्वारा स्थापित ध्रुपद संस्थान में बुधवार को नया एडिशन शुरू होने जा रहा है। जी, भोपाल में आज खुलेगा मध्य प्रदेश का पहला संगीत को समर्पित रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुलने जा रहा है। 1 करोड़ की लागत से तैयार स्टूडियो को SBI ने फंड किया है। पंडित अखिलेश गुंदेचा ने बताया, गुरुकुल में देश का अलग अलग राज्यों समेत विदेश के भी बच्चे ध्रुपद गायकी की विधा सीख रहे हैं। वे भारतीय संगीत की बारीकियों को समझ रहे हैं, मगर मंच पर श्रोताओं के सामने प्रस्तुति देना अलग अनुभव होता है। स्टूडियो में शास्त्रीय संगीत रिकॉर्ड करने के लिए अलग टेक्निकल अनुभव चाहिए। ये स्टूडियो ऐसे ही रिकॉर्डिंग के लिए तैयार किया गया है। ये स्टूडियो किसी भी तरह के म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए ओपन होगा। ये सिर्फ शास्त्रीय संगीत तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ पर लीजेंड्स भीमसेन जोशी, मल्लिकार्जुन मंसूर आदि के पुराने रिकॉर्ड डिजिटल किए जाएंगे। हमारा जीवन हमें अपने पुरखों से विरासत में मिला है और उसे जीने की संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्य भी उन्हीं की देन है। इन्हीं सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जुड़ने और उन्हें अनुभव करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश

जन परिषद का 37वां वार्षिक एवं सम्मान समारोह रविन्द्र भवन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व राजदूत दीपक वोहरा ने संस्था के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियां इसके रचनात्मक गीतों को गुनगुनाएंगी। उन्होंने चाणक्य के 6 सूत्रों के जरिए राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया और कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। समारोह में SES अनुपम राजन, एयर मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव और DGP कैलाश मकवाना भी शामिल हुए।

राजधानी में कबाड़ अब सिर्फ कचरा नहीं बल्कि कला और कमाई का नया जरिया बन चुका है। आज वर्ल्ड अप साइकिलिंग डे है, जो हर साल 24 जून को मनाया जाता है। ये दिन बेकार पड़ी चीज़ों को रचनात्मक तरीके से उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं में बदलने के लिए समर्पित है, जिससे कचरा कम होता है और पर्यावरण को बढ़ावा मिलता है। शहर के एनजीओ, स्वयं सहायता समूह और सरकारी संस्थान आदि इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। यहाँ पुरानी जीन्स, प्लास्टिक की बोतलें, गाड़ियों के टायर और बुटीक से निकलने वाला फैब्रिक वेस्ट लैंडफिल में जाने के बजाय विदेशों के ड्राइंग रूम में की शोभा बढ़ा रहा है। भोपाल के सनों के बदलाव में आम लोगों से लेकर नगर निगम जैसी संस्थाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।

आदिम संस्कृति के सहज रंग जब आधुनिक डिजाइन की कूची से मिलते हैं तो कला का एक नया संसार आकार लेता है। ऐसा ही एक अद्भुत समन्वय राजधानी में आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 में देखने को मिला। जनजातीय कार्य विभाग की संस्था कन्या और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साझा प्रयासों से आयोजित विशेष कार्यशालाओं में पारंपरिक जनजातीय शिल्प को समकालीन बाजार के अनुरूप एक नया और वैश्विक फ्लेवर दिया गया। ये पहल केवल उत्पादों के रूप बदलने की नहीं बल्कि सदियों पुराने जनजातीय ज्ञान और आधुनिक उपयोगिता के बीच एक आत्मीय संवाद स्थापित करने की रही।

कला केंद्र भारत भवन एक बार फिर भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा और रागों के जादू से गुलजार होने जा रहा है। अनहद भारत भवन द्वारा आगामी 3 से 5 जुलाई तक 3 दिवसीय विशेष संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस सुरमई उत्सव में देश के प्रतिष्ठित और सुविख्यात शास्त्रीय गायक प्रस्तुतियों से भोपाल के संगीत रसिकों को भावों व लय की एक अनूठी दुनिया में ले जाएंगे।

संगीत प्रेमियों के लिए एक विशेष अवसर सामने आया है। भोपाल स्थित बैठक द आर्ट हाउस में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख राग राग यमन पर एक 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का संचालन ध्रुपद गायिका और बैठक द आर्ट हाउस के संस्थापक गुरु सुरेखा कामले द्वारा किया जाएगा। ये कार्यशाला 24 से 29 जून तक होगी, जिसका समय

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। श्रोताओं, बीते एपिसोड में हमने रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7 के साथ उस गहन भाव भूमि को महसूस किया जहां शब्द केवल कथा नहीं कहते, वे भीतर उतरकर आत्मा को स्पर्श करते हैं। वहां कर्ण के स्वर में केवल प्रतिरोध नहीं था, बल्कि व्यवस्था से टकराता हुआ एक सच था। जहां ज्ञान उपेक्षित था और जन्म की दीवारें पुरुषार्थ के मार्ग में खड़ी थी। फिर हमने उस मौन साधना को देखा जहां गुरु के स्नेह और शिष्य के समर्पण के बीच कर्ण स्वयं को तपाता है, और अंततः वो क्षण भी जब पीड़ा उसकी जांघ में धसती जाती है पर उसका संकल्प तनिक भी नहीं डिगता। ये वही बिंदु है जहां कर्ण की महानता दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है उसकी निस्तब्धता में, उसके धैर्य में और उसके भीतर जलते हुए उस अग्निकुंड में जो उसे साधारण से असाधारण बनाता है।
1: हाँ श्रोताओं, यह यात्रा अब और भी भीतर उतरती जा रही है, जहां प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में मिलते हैं। कर्ण का जीवन अब केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह गया, वह एक ऐसी साधना बन चुका है जिसमें हर क्षण उसे खुद से ही जूझना है। यहाँ पीड़ा भी शिक्षक है और मौन भी मार्गदर्शक। उस विषदंश की वेदना केवल शरीर तक सीमित नहीं, वह उस व्यवस्था की चुभन है जो मनुष्य को बार बार उसकी सीमा का बोध कराती है। अब कथा उस दहलीज पर खड़ी है जहां भावनाएं और भी तीव्र होंगी, निर्णय और भी कठोर होंगे और कर्ण का पथ नई चुनौतियों से भर उठेगा। यह वह चरण है जहां भीतर सुलगती हुई अग्नि अब धीरे धीरे प्रकाश बनने को है, पर उस प्रकाश तक पहुंचने से पहले उसे और अंधेरों से गुजरना होगा। आइए श्रोताओं, अब इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं उस अगले विस्तार की ओर, जहां कर्ण की कथा और गहरी होती है, उसके संकल्प की धार और पैनी हो जाती है और जीवन उसे ऐसे मोड़ों से परिचित कराता है जिनसे गुजरकर ही कोई व्यक्तित्व अमिट बन पाता है। अब सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 को। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की, भक्तिपूर्ण वह वल छाती। सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले,
2: शिव शिव, तूने यह की मूर्खता पड़ी, सहता रहा चल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी।
1: तनिक लजाकर कहा कर्ण ने,
3: नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया।
1: परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में, दांत पीस कर आंखें तरेर कर बोले,
2: कौन छली है तू? ब्राह्मण है क्या? किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू?
1: यहीं से कथा निर्णायक मोड़ लेती है, गुरु के मन में शंका जन्म लेती है। भक्ति और विश्वास के बीच अब सत्य का प्रश्न खड़ा हो गया है। यही वह क्षण है जहां करुणा से कथा क्रोध और नीति की दिशा में मुड़ती है। श्रोताओं, यह काव्य संवाद सुनकर मन सचमुच भर आता है। यह केवल एक कीट दंश की कथा नहीं, यह विश्वास की अग्नि परीक्षा है जहां शिष्य अपनी पीड़ा से अधिक गुरु की नींद की रक्षा करता है। ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा, ऐसा मौन त्याग आज कहां देखने को मिलता है? तब संयम और समर्पण ये शब्द जैसे हमारे जीवन से सरक कर केवल ग्रंथों और कथाओं में सिमटते जा रहे हैं। कर्ण ने जिस वेदना को सहा वह केवल शरीर की पीड़ा नहीं थी, वह भाग्य की विडंबना भी थी जो कभी जन्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर उसके मार्ग में दीवारें खड़ी करती रहीं। लगता है समय भी जैसे उसी के धैर्य की परीक्षा लेने पर तुला हो। और यही इस प्रसंग को साधारण कथा से उठाकर अमर कर देता है। सांच को आँच नहीं, पर आँच पहले उसी पर आती है। कर्ण की देह तो अब तक पत्थर बनी रही, पर अब बारी है उसकी असली पहचान की, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जन्म और कर्म आमने सामने खड़े हैं। गुरु का रोष अग्नि सा धधक रहा है और शिष्य का हृदय हथेली पर रखा है। आइए सुनते हैं द्वितीय सर्ग का भाग 9, जहां सत्य की धार किसी खड्ग से कम तीखी नहीं है।
2: सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा।
1: क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कापने लगे भय से थर थर।
3: सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्त वीर्य के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का, पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। पता सका मैं नहीं इसी से, हे प्रभु जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी, पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं, अपने आप मरा सा जाता हूं।
1: श्रोताओं, यह दृश्य मानो वज्र और कमल का एक साथ टूटना है। कर्ण का सिर गुरु के चरणों में झुका हुआ है, जैसे आंधी में झुकता कोई अशोक वृक्ष टूटता नहीं पर भीतर से चिर जाता है। उसकी वाणी में वह कपकपी है जो केवल भय की नहीं आत्मग्लानी की होती है। ज्ञान पाने की प्यास उसके लिए गंगा थी, पर जन्म की रेत ने बार बार उसका मार्ग रोक लिया। आज वह स्वयं को अपराधी की तरह प्रस्तुत कर रहा है, जबकि उसका दोष केवल इतना ही है कि उसने ऊंचा उड़ने का स्वप्न देखा।
0: श्रोताओं, गुरु की आंखों में दहकती ज्वाला है और शिष्य का मन जैसे राख से ढका अंगार। परशुराम का क्रोध आकाश चीरता धूम केतु सा प्रखर है, तो कर्ण की विनती संध्या की अंतिम लौ कंपित। किंतु अभी भी उजास बचाए हुए शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे बाण हैं और सत्य नंगी धार की तरह चमक रहा है।
1: और उस करुण क्षण को दिनकर की लेखनी ने ऐसे छुआ मानो सूर्य स्वयं अपने ही अंश की पीड़ा लिख रहा हो। एक तपता तेज जिसे संसार ने नाम देने से पहले ही ठुकरा दिया। श्रोताओं, करुणा की इस गहन घटा के बाद अब शब्दों का आकाश फिर खुलने जा रहा है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल जन्म से नहीं अपने चुनावों और अपने व्रतों से पहचाना जाता है, कि सम्मान छल से नहीं सत्य की अग्नि से तपकर मिलता है, और यह भी कि महत्वाकांक्षा जब मर्यादा से टकराती है तो आत्मा स्वयं अपना न्यायालय बन जाती है।
0: आइए इसी सीख को हृदय में संजोए हम द्वितीय सर्ग के भाग 10 में प्रवेश करें, जहां कर्ण शाप से नहीं अपने अधूरे स्वप्नों से जूझता दिखाई देगा, जहां गुरु और शिष्य के बीच केवल दंड नहीं एक गहरी पहचान का प्रकाश भी फूटेगा। सुनते हैं रश्मि रथी का भाग 10।
3: छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। ये तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अब है देख अर्जुन को मर कर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें।
1: लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले,
2: हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया, कभी नहीं मैंने पाया।
1: श्रोताओं, यह प्रसंग किसी साधारण स्वीकारोक्ति का नहीं है, आत्मा के दरबार में खड़े एक मनुष्य के नग्न सत्य का है। कर्ण यहां केवल अपने गुरु के सामने नहीं, अपने ही अंतःकरण के कटघरे में खड़ा है, जहां ना कोई आड़ है ना कोई तर्क। छल से पाया मान उसके लिए मान नहीं, मानो अंगार है जो भीतर ही भीतर उसे दग्ध कर रहा है। यह दृश्य मानो तपते मरुस्थल पर अचानक फूट पड़ी जलधारा हो। एक और कर्ण है जो शाप को भी प्रसाद की तरह हथेली पर धरने को तैयार खड़ा है, और दूसरी ओर गुरु हैं जिनकी कठोर दृष्टि के कोनों से करुणा ओस की बूंद बनकर ढलक रही है। यह क्षण केवल अपराध और दंड का नहीं, हृदयों के पिघलने का है, जहां शिष्य की निष्ठा और गुरु की करुणा मिलकर समय की शिला पर अमिट रेखा खींच देती है।
0: श्रोताओं, उसकी पीड़ा केवल अपने अपराध की नहीं बल्कि अधूरी रह गई आकांक्षाओं की भी है। अर्जुन को परास्त करने की इच्छा, दुर्योधन के प्रति उसका अटूट संबंध और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की जिद, वो दो दिशाओं के बीच खड़ा है। एक ओर धर्म का आह्वान, दूसरी ओर मित्रता का बंधन। कर्ण भली भांति जानता है कि वचन और उपकार दोनों मनुष्य को बांध लेते हैं और वही बंधन उसे अपने निर्णयों में स्वतंत्र नहीं रहने देते। फिर भी वो अपने जीवन की याचना नहीं करता बल्कि दंड को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर है। यही उसकी महानता है कि वो अपने दोष से भागता नहीं, उसे स्वीकार कर उससे ऊपर उठना चाहता है।
1: श्रोताओं, दिनकर जी मूलतः वीर रस के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती हैं। पर देखिए, उसी वीर रस के कवि ने कर्ण की करुणा को भी उतनी ही गहराई से उकेरा है। यही उनकी लेखनी की शक्ति है। वह हमें साहस भी देती है और संवेदना भी सिखाती है। आज की पीढ़ी के लिए यह संदेश स्पष्ट है, संघर्ष से घबराना नहीं, अपने लक्ष्य ऊंचे रखना, पर सत्य और आत्मसम्मान को कभी ना त्यागना। कर्ण ने भले ही असत्य का सहारा लिया हो, पर उसकी साधना और जिज्ञासा इतनी सच्ची थी कि गुरु का मन द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता।
0: तो श्रोताओं, इसी गहन भाव विस्फोट, आत्म स्वीकृति और गुरु शिष्य के इस अद्वितीय प्रसंग के साथ आज की ये काव्य यात्रा यहीं एक मधुर विराम लेती है। कर्ण का अंतर्द्वंद्व, उसकी पीड़ा, उसका स्वाभिमान और उसका टूट संकल्प, ये सब मिलकर हमें सोचने पर विवश करते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग 11, 12 और 13 का काव्य पाठ और चर्चा, जहां कर्ण की यात्रा एक नए निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। लेकिन जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी संदीप शर्मा ने,
1: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने,
4: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
0: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की यात्रा यहीं विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

जैक्स स्पिक्स और जापानी मर्सिनरी, एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग। 1615 में हिराडो के सकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC के मुख्य व्यापारी जैक्स स्पिक्स ने भटकते हुए लोगों की एक बेचैन भीड़ को देखा और उसमें एक साम्राज्य के उद्धार का रास्ता पाया। उस समय VOC सैन्य जनशक्ति के पुराने संकट से जूझ रही थी। यूरोपीय सैनिक महंगे थे, देरी से पहुंचते थे और अक्सर 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे। स्पिक्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी के मोहरे के रूप में काम करने के लिए साहसी पुरुषों की एक व्यवस्थित भर्ती शुरू करें। यह कोई गुप्त अभियान नहीं था। टोकुगावा शोगुन की स्पष्ट सहमति के साथ स्पिक्स ने हिराडो की लड़खड़ाती फैक्ट्री को एक रणनीतिक भर्ती केंद्र में बदल दिया। जॉन पीटर्स

0: में तर्क दिया कि तलवार ही एकमात्र दवा थी जिसे ये सैनिक वास्तव में समझते थे। हालांकि इन सैनिकों ने बांदा द्वीपों के क्रूर दमन और व्यापार की झड़पों में असाधारण निडरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कई डच अधिकारियों की नजर में वे हमेशा एक विद्रोही भीड़ ही रहे। ये प्रयोग अंततः 1623 के अम्बोइना साजिश के बाद पूरी तरह विफल हो गया, जिसके बाद VOC ने जापानी सैनिकों पर हमेशा अविश्वास रखने का फैसला किया। भले ही जैक्स स्पेक्स का डच झंडे के नीचे जापानी सैनिकों की लंबी कतारें मार्च कराने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एशियाई सैनिकों की व्यवस्थित भर्ती का वह बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया जिसने अंततः पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यों की सफलता को परिभाषित किया।
1: नमस्कार, 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक। और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की। दस साल का एक बालक
2: जी
1: आकाश में उड़ती हुई एक गोरैया को देखता है और उसे मार गिराता है। गोरैया जैसे ही जमीन पर गिरती है वो उसे दौड़कर उठा लेता है, पर इस पक्षी को मारकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस पक्षी को वो बहुत ही गौर से देखता है और आश्चर्य में पड़ जाता है। इस गोरैया की गर्दन पर पीले धब्बे हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे। विचारों में डूबा हुआ ये बालक इस पक्षी को लेकर अपने मामा अमरुद्दीन को दिखाता है और उनसे पूछता है कि ये कौन सी जाति की चिड़िया है। मामा भी बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं कर पाते। वे उसे बंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के एक छोटे कमरे में ले जाते हैं और बच्चे का परिचय इस संस्था के सचिव W.S. मिलार्ड से कराते हैं।
2: हाँ श्रोताओं, मिलॉर्ड एक भारतीय बच्चे को पक्षी की इतनी रुचि दिखाने के लिए आश्चर्य पड़ जाते हैं। वे बच्चे को कमरे में सुरक्षित ढंग से रखे हुए अलग अलग तरह के सुरक्षित मुद्रा पक्षियों को दिखाते हैं। इस बच्चे की पक्षियों के विषय में उत्सुकता और जिज्ञासा शांत होने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। पर फिर मिलॉर्ड एक अलमारी से एक गोरैया निकालते हैं जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बच्चे ने मारी थी। बच्चा आश्चर्यचकित होकर के कहता है, अंकल मिलॉर्ड, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पक्षी इतने प्रकार के होते हैं। मैं इन सभी के विषय में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मिलॉर्ड उसकी बात सुनकर के मुस्कुराते हैं। उन्होंने वयस्कों में भी कभी पक्षियों के प्रति इतनी उत्सुकता कभी नहीं देखी थी जितनी उस बालक में थी।
1: इसके बाद ये बालक रोजाना ही संग्रहालय में आने लगा और चिड़ियों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित रखने की विधियां सीखने लगा। जानते हैं श्रोताओं, ये बालक कौन था? ये बालक था सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, जो बाद में सलीम अली के नाम से परिंदों के मसीहा के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए।
2: हाँ श्रोताओं,
1: पक्षी विज्ञान में जन्मजात रुचि रखने वाले और भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली का जन्म 12 नवम्बर 1896 को बंबई के खेतवाड़ी इलाके में एक बड़े परिवार में हुआ था।
2: श्रोताओं, उनके 5 भाई और 4 बहनें थीं। उनकी माता का नाम था जिजात उन निशा। जब वे 1 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। जब वे 3 वर्ष के हुए तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। सलीम अली के मन में पक्षियों के प्रति उत्सुकता और रुचि उनके चाचा अमीरुद्दीन तैयब जी ने उत्पन्न की थी। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा अमीरुद्दीन तथा चाची बेगम हमीदा ने उनका और उनके भाई बहनों का पालन पोषण किया।
1: श्रोता, उस समय पक्षियों में लोगों की रुचि बहुत कम थी। मुंबई के बाजारों में पक्षी खुलेआम बेचे जाते थे। अक्सर 1 रुपए में 8 से 12 पक्षी मिल ही जाते थे। सलीम अली तरह तरह के पक्षी बाजार से खरीद कर उन्हें केन की टोकरियों में रखते थे और थोड़ा बहुत प्रशिक्षित करके उन्हें छोड़ देते थे। अब वे किसी पक्षी को न तो मारते थे और न ही लंबे समय तक बंद रखते थे और न ही हमेशा के लिए उसे पालतू बनाते थे। वे कोई पक्षी ले आते, उसका अध्ययन करते और उसकी विशेषताएं जान लेने के बाद उसे छोड़ देते थे।
2: हाँ श्रोताओं, और 11 वर्ष की आयु में उन्हें एक स्थानीय स्कूल में भर्ती कराया गया। कुछ ही समय बाद उन्हें सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश मिल गया। 14 वर्ष की आयु में खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें अपने भाई और भाभी के साथ हैदराबाद सिंध पाकिस्तान जाकर के रहना पड़ा। वहां भी वे कार्यालय के चपरासी के साथ पक्षियों के घोंसलों की तलाश में रहते और पक्षी और उनके अंडों का वे अध्ययन किया करते थे। कुछ साल बाद वे मुंबई वापस लौट आए।
1: सन 1913 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की। तब तक डॉक्टर सलीम अली ने वन, वन्य पशु पक्षियों और आखेट संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ डाली थीं और रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल कर ली थी। इन अध्ययनों और आत्मविश्लेषण के फलस्वरूप अली जी में वन्य जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। वे पक्षियों को पकड़कर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते थे। इसके बाद उनके जीवन में एक मोड़ आया। बर्मा में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार का उन्हें एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि यदि सलीम अली की रुचि पढ़ाई में नहीं है तो वे वहां आकर नवस्थापित खान उद्योग में कार्य संभाल सकते हैं। सलीम अली की गणित में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसीलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वे बर्मा जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु वहां पर भी व्यापार में उनकी रुचि कभी नहीं थी। वे वहां पर भी जंगलों में जाकर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करते रहते। यहां वे J.C. होयवुड नाम के एक वन अधिकारी से मिले। डॉक्टर अली को बर्मा के पक्षियों के विषय में होयवुड से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने पक्षियों और पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन के विषय में अत्यधिक ज्ञान प्राप्त किया।
2: अब चूंकि उनका रुझान व्यापार की ओर नहीं था, इसलिए उन्हें मुंबई लौटना पड़ा। यहां वे सेंट जेवियर कॉलेज में जीव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष फादर ब्लेटर के संपर्क में आए। उनके प्रोत्साहन से डॉक्टर अली ने पशु विज्ञान विषय लेकर के स्नातक की परीक्षा पास की। दिसंबर 1918 में 22 वर्ष की आयु में डॉक्टर अली ने तहमीना के साथ विवाह किया। तहमीना अंग्रेजी और उर्दू में पारंगत थी और उनके पास इंग्लैंड का वीजा भी था। तहमीना ने अपने पति को पक्षियों के बारे में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको भेज दिया इंग्लैंड।
1: डॉक्टर सलीम अली के घर के आंगन में एक पेड़ था जिस पर बया नाम के पक्षी ने एक घोंसला बनाया था। सारे दिन वे पेड़ के नीचे बैठे रहते और बया पक्षी के कार्यकलापों को एक नोटबुक में लिखते रहते। बया पक्षी के कार्यकलापों और व्यवहार को उन्होंने एक शोध निबंध के रूप में प्रकाशित कराया। ये निबंध पक्षी विज्ञान में उनकी प्रसिद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। श्रोताओं,
2: डॉक्टर अली के पास पक्षी विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी, परंतु विवाह के बाद 5-7 वर्ष के अंदर उन्होंने अत्यधिक जानकारी एकत्र कर ली और पक्षी विज्ञान और जीव विज्ञान तथा पशु विज्ञान का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी बीच उन्हें एक मित्र की एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद फादर ब्लेटर ने उनकी मदद की। उन्होंने डॉक्टर सलीम अली को मुंबई से नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी म्यूजियम में गाइड लेक्चरर के पद पर नौकरी दिलवा दी। यहां कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे पक्षियों के संबंध में पूर्ण विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो उन्हें उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना होगा। और देश के किसी भी संस्थान में पक्षी विज्ञान पर ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं था, इसीलिए अब उनका अध्ययन करने के लिए उन्होंने बर्लिन जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने युवा पक्षी वैज्ञानिक बर्नहार्ड के साथ पक्षियों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। बर्लिन में डॉक्टर अली ने निष्ठापूर्वक एकाग्र मन से अध्ययन किया। सन 1930 में बर्लिन से वापस आए और उन्होंने निजाम के हैदराबाद राज्य में कार्य आरंभ किया और इसके लिए उनको कुछ अनुदान भी मिला। उन्होंने पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया और पक्षियों का सर्वेक्षण भी किया। पक्षियों की आदतों के अध्ययन के लिए उनकी प्रशंसा की जाने लगी। यहां उन्हें नीलगिरी के पक्षियों का अध्ययन करने का अवसर मिला।
1: सन 1934 से 1939 के बीच डॉक्टर अली ने देहरादून में पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया। अब उन्हें विश्व सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानियों में मान्यता मिल गई। पक्षियों की जानकारी के विषय में उन्होंने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी, जो 1941 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में पक्षियों के विषय में अनेक नई जानकारियां प्रस्तुत की गई थी। और रोचक बात तो यह है श्रोताओं कि इस पुस्तक की अब तक 60,000 से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं।
2: हाँ श्रोताओं, बात सन 1945 की है। उन्होंने कैलाश मानसरोवर के पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ स्पैरो में उन्होंने इन सब बातों की उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। कच्छ की मरुभूमि के पक्षियों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। इस अध्ययन का वर्णन उन्होंने बर्ड्स ऑफ कच्छ नामक अंग्रेजी ग्रंथ में किया। पक्षियों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल पर यूरोप का भ्रमण किया। उनकी डायरी में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है।
1: सन 1948 में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डिलॉन रिप्ले के साथ एक प्रोजेक्ट आरंभ किया, जिसमें 10 भागों भारत और पाकिस्तानी पक्षियों के विषय में जानकारी लिखनी थी। इस पुस्तक का नाम हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है। इसमें उनके 20 वर्षों के अध्ययनों का निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। इसमें सभी प्रकार के पक्षियों, उनके दिखाई देने और प्रवासी आदतों से संबंधित अनेक बातों की जानकारी दी गई है। अब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक बन चुके थे। देश विदेश में उनके कार्य की प्रशंसा हुई। उन्हें सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। सन 1953 में उन्हें एशियाटिक सोसाइटी मेडल प्रदान किया गया। सन 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और सन 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1978 में आंध्र विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद डिग्रियों से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1958 में पद्म भूषण और सन 1976 में पद्म विभूषण प्रदान कर सम्मानित किया। सन 1981 में बांग्लादेश की एशियाटिक सोसाइटी ने उनके कार्य की प्रशंसा और सराहना के रूप में उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया। इनके अलावा भारत सरकार ने डॉक्टर सलीम अली को सन 1982 में उनके पक्षी विज्ञान में नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। वन्य जीवन की रक्षा के प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा की गई और उन्हें सन 1983 में राष्ट्रीय पुरस्कार यानी स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। और उसी वर्ष अमेरिका में राष्ट्रीय वन्य जीवन संघ यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन ने उनको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके उनका सम्मान किया।
2: हाँ श्रोताओं, डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों के सर्वेक्षण के लिए 65 वर्ष से भी अधिक समय तक समस्त भारत देश का भ्रमण किया। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 60 वर्ष भारतीय पक्षियों के साथ बिताए। परिंदों के विषय में इनका ज्ञान इतना अधिक था कि लोग उन्हें परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश मानते थे। उन्होंने पक्षियों का अध्ययन नहीं किया बल्कि प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में भी बहुत काम किया। उन्हें 5,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जिसे उन्होंने बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को समर्पित कर दिया था।
1: श्रोताओं, 91 साल की उम्र में 20 जून 1987 को डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञानी ने अपनी अंतिम सांस ली। और आज ऐसा लगता है कि परिंदों के इस मसीहा के चले जाने से पक्षी जैसे बेसहारा हो गए हैं। देश के इस महान वैज्ञानिक को आने वाली सदियां भी कभी नहीं भूल पाएंगी श्रोताओं।
2: हाँ श्रोताओं, ऐसे थे हमारे पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था सुहासिनी बैलवंशी ने। स्वर थे प्रमोद शर्मा और कंचन राजानी के। अब हमें आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह हम एक और भारतीय महान वैज्ञानिक की आपके साथ उनके जीवन दर्शन की कुछ बातें करेंगे।

जहां रोमन सिक्कों का मिलन भारतीय रेशम से हुआ, मिस्र के तपते पूर्वी रेगिस्तान में जहां लाल रेत और लाल सागर का गहरा नीला पानी मिलते हैं। कभी एक ऐसा शहर बसा था जिसने अपने उजाड़ परिवेश को चुनौती दी थी। यह था बेरेनिका, एक ऐसी जगह जहां रोम का वैभव पूर्व के रहस्यों से मिलता था। 275 ईसा पूर्व में टॉलेमी द्वितीय द्वारा स्थापित और उनकी मां के नाम पर रखा गया यह शहर विलासिता के केंद्र के रूप में नहीं बल्कि एक सैन्य चौकी के रूप में शुरू हुआ था, जिसे अफ्रीकी युद्ध हाथियों को मिस्र लाने के लिए बनाया गया था। 30 ईसा पूर्व में मिस्र पर रोमन विजय के बाद यह दूरस्थ बंदरगाह प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय एम्पोरियम में से एक में बदल गया। इस शहर के अविश्वसनीय उत्थान की कुंजी यूनानी हिप्पुल्स जैसे नाविकों द्वारा मानसून की हवाओं की खोज में छिपी थी, जिसने जहाजों को तट के किनारे रेंगने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बंदरगाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। घाट उन विशाल जहाजों के आगमन से हलचल में रहे होंगे जो भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की सवारी करके अभी अभी पहुंचे थे। रोमन व्यापारी जिनकी जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थीं, लोबान और लोहबान की महक से भरी हवाओं के बीच घूमते थे। यहां रोमन अभिजात वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित विलासिता चीन से आने वाला चमकता रेशम उस शाही मुद्रा के बदले खरीदा जाता था जिसने साम्राज्य की वैश्विक पहुंच को ईंधन दिया था। बेरेनिका के अब छोड़े जा चुके स्थल पर मिले खजानों की विविधता अभूतपूर्व जुड़ाव की कहानी बयान करती है। पुरातत्वविदों ने भारत से बड़ी मात्रा में आई सागौन की लकड़ी बरामद की है, जिसे संभवतः समुद्र पार करने वाले जहाजों से दोबारा उपयोग के लिए निकाला गया था। इसके साथ ही सुदूर पूर्वी जावा के कांच के मनके भी मिले हैं। उन्हें ऐसे एम्फोरा यानी मिट्टी के पात्र मिले जिनमें कभी भूमध्य सागरीय शराब और जैतून का तेल लाया गया था, जो विदेशी व्यापारियों और बस्तियों की मेजों के लिए नियत थे। शायद सबसे जीवंत खोज 16 पाउंड भारतीय काली मिर्च से भरा एक जार था, एक ऐसा पुरातात्विक खजाना जो प्राचीन मसाला व्यापार के पैमाने को रेखांकित करता है। लेकिन बेरेनिका केवल माल ढोने की जगह से कहीं अधिक थी। यह एक जीवंत बहुजातीय संस्कृतियों का संगम था। इसकी रेगिस्तानी सड़कों पर चलते हुए कोई भी विभिन्न भाषाओं का एक संगीत सुन सकता था। स्थानीय पत्थरों पर खुदे हुए भित्ति लेख आम आदमी के साहित्य को दर्शाते हैं, जिसमें दक्षिण अरबियों, सीरियाई रेगिस्तान के पलमायरेन, इथियोपिया के ऊंचे इलाकों के एक्सुमाइटस और भारत के दक्षिणी छोर के तमिल भाषी लोगों की उपस्थिति का पता चलता है। इस विविधता के बीच देवी एफ्रोडाइट की मूर्तियां एक परिचित ग्रीको रोमन सुकून के रूप में खड़ी थीं, एक ऐसे शहर में जहां दुनिया की संस्कृतियों का मिलन होता था। इस रेगिस्तानी एम्पोरियम ने साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया इतिहास की किताबों के सुझावों की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक थी। बेरेनिका वह अनिवार्य प्रवेश द्वार था जहां लाल सागर एक विशाल बहुकेंद्रित ऐतिहासिक इकाई में खुलता था जो पूर्व में हजारों मील तक फैली हुई थी। यह उस समय का प्रमाण है जब मिस्र की रेत का एक सुदूर टुकड़ा एक परस्पर जुड़ी दुनिया की धड़कन के रूप में कार्य करता था, जो मौसमी हवाओं और विनिमय की साझा मानवीय इच्छा से एकजुट था।

हुए हैं। पहली नजर में ये जहाज एक क्लासिक चीनी जंग की तरह दिखता है। इसका ऊंचा पिछला हिस्सा और मजबूत खंडों में बटा हुआ ढांचा इस क्षेत्र के किसी भी नाविक के लिए एक परिचित दृश्य है। लेकिन जैसे ही हवा पाल को छूती है, आप एक अद्भुत विसंगति देखते हैं। इस जहाज पर यूरोपीय शैली की रिंगिंग अर्थात मस्तूल और रस्सियों का ढांचा लगा है। ये एक ऐसा तकनीकी मेल है जो इसे पारंपरिक पालों की तुलना में अधिक सटीकता के साथ हवा के विपरीत चलने की अनुमति देता है। ये जहाज उस हाइब्रिड समुद्री संस्कृति का भौतिक रूप है जो 17वीं शताब्दी के दौरान फली फूली थी। इस जहाज पर मौजूद मानवीय तत्व भी उतने ही विविधतापूर्ण हैं। जापानी व्यापारी अक्सर लहरों के पार अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए विशेषज्ञों की एक विविध मंडली को काम पर रखते थे। डेक के नीचे नेविगेटर के केबिन में आप पुर्तगाली और चीनी नेविगेटरों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए देख सकते हैं। उनके सिर एक साझा दस्तावेज पर झुके हैं जो दुनिया के किसी भी अन्य चीज की तरह नहीं दिखता। ये एक पॉलीवोकल पोर्टोलन है, एक दोहरी भाषा वाला समुद्री चार्ट जो दो दुनियाओं के बीच एक सेतु का काम करता है। ये चार्ट केवल अनुवादित नहीं थे, वे ज्ञान का संगम थे। वे पश्चिमी मानचित्र कला के गणितीय ग्रिड वर्क को शामिल करते थे। साथ ही इसमें एशियाई तटों के खतरनाक रेतीले किनारों पर नेविगेट करने के लिए आवश्यक स्थायी भाषाई संकेत और मील के पत्थर भी होते थे। ये सहयोग वैश्विक प्रारंभिक आधुनिकीकरण की पहचान था। ये एक ऐसा काल था जहां सांस्कृतिक विरासत को गोद लेने की आदत केवल यूरोप से एशिया की ओर एक तरफा नहीं बहती थी, बल्कि ये काफी हद तक एक पारस्परिक प्रक्रिया थी। एक चीनी जंग पर मौजूद पुर्तगाली नेविगेटर कोई विजेता नहीं था, बल्कि एक विशेषज्ञ पेशेवर था जिसे पहले से मौजूद एशियाई वाणिज्यिक प्रणालियों में शामिल कर लिया गया था, जो प्रणालियां अक्सर यूरोपीय प्रणालियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और लचीली थीं। ये वास्तविकता पुराने 1492 स्कीमा को चुनौती देती है, जो अक्सर पश्चिम के उदय को एक ऐसी कहानी के रूप में चित्रित करता है जहां यूरोपीय तकनीक ने एक स्थिर पूर्व को अभिभूत कर दिया था। इसके विपरीत ऐतिहासिक स्रोत एक इंटरैक्टिव डोमिनेंस का सुझाव देते हैं, जहां सफलता सांस्कृतिक सीमाओं के पार अनुकूलन करने, नकल करने और नवाचार करने की क्षमता पर टिकी थी। जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक अभिलेखागार अक्सर उनके अपने शिपिंग मार्गों के सतही नेटवर्क को उजागर करते हैं, वहीं इन हाइब्रिड क्रू का अस्तित्व एशियाई व्यापार के बहुत बड़े डीप वेब की ओर इशारा करता है। इस अदृश्य दुनिया में यूरोपीय विशेषज्ञता को अक्सर एशियाई संगठनों द्वारा अपने अधीन कर लिया जाता था, जैसे कि शक्तिशाली झेंग परिवार जिनका राजस्व पूरी डच कंपनी वीओसी से भी अधिक था। यूरोपीय रिंगिंग और बहुभाषी चालक दल वाला हाइब्रिड जंग इस वैश्विक जुड़ाव का प्राथमिक वाहन था। अंततः दोहरी भाषा वाले चार्ट का उपयोग करने वाला पुर्तगाली नेविगेटर एक ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जो कम संकीर्ण और अधिक परस्पर जुड़ी हुई हो रही थी। ये साबित करता है कि प्रारंभिक आधुनिक युग में सबसे सफल खिलाड़ी वे थे जिन्होंने समुद्र की इस हाइब्रिडिटी को अपनाया।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी शक्ति के जीवंत प्रतीक थे। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन में ही 6 वर्ष की आयु में छज्जे से नीचे गिर जाने के कारण उनका सर पत्थर से टकरा गया था, जिसके फलस्वरूप उनके मस्तक में गहरी चोट आई थी तथा काफी रक्त बह गया था। इस दुर्घटना से उनकी दाई आंख के ऊपर एक स्थायी निशान बन गया था। परवर्ती काल में श्री रामकृष्ण देव ने इस घटना को सुनने के बाद कहा था,
1: एक तरह से अच्छा ही हुआ। यदि इस प्रकार उसके सिर से रक्त निकल जाने के कारण उसकी शक्ति का क्षय ना हुआ होता तो वो अपनी अदम्य शक्ति से जगत को उलट पलट कर डालता।
2: इस प्रकार शक्ति के जीवंत विग्रह के रूप में स्वामी जी हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से देखा था कि भारत की हजारों वर्षों की गुलामी के मूल में लोगों की शारीरिक और मानसिक दुर्बलता ही रही थी। इसके फलस्वरूप ईर्ष्या, द्वेष, कायरता और कपटता ने मानो राष्ट्रीय गुणों का रूप धारण कर लिया था। कर्महीनता, पलायनवादिता, अंधविश्वास और कुरीतियों ने धर्म का रूप ले लिया था। इसीलिए स्वामी जी इस सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए लोगों को शक्ति का मूल मंत्र देते हुए कहते हैं,
3: क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्ति छिपी हुई है? क्या कोई वैज्ञानिक भी उन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी भी उसकी असीम शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह नहीं करना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर विद्यमान है।
0: मनुष्यों ने अपने दैवी स्वरूप को भुलाकर स्वयं को अत्यंत क्षुद्र और पौरुष विहीन समझ रखा है। उनकी इस दुर्बलता को दूर करने हेतु स्वामी जी उपनिषदों की अमर वाणी का उद्घोष करते हुए कहते हैं,
3: तुम प्रभु की संतान, शाश्वत आनंद के हिस्सेदार, पवित्र और पूर्ण हो। हे पृथ्वी निवासी, ईश्वर स्वरूप भाइयों, तुम भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। ये कथन मानव स्वरूप पर एक लांछन है। ऐ सिंहों, आओ और अपने भेड़ बकरी होने का भ्रम दूर कर दो। तुम अमर आत्मा, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, शाश्वत और मंगलमय हो। तुम जड़ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं।
2: धर्म के यथार्थ स्वरूप जो उपनिषद में वर्णित हैं, उसे स्वामी जी गिरी कंदराओं में अवस्थित कुछ सन्यासियों के हाथों से निकालकर जनता की संपत्ति बना देना चाहते थे। वे कहते थे,
3: उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वो है अभी निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता।
0: इसी भय से मुक्ति पाने के लिए स्वामी जी आत्मविश्वास की उपलब्धि पर जोर देते थे।
3: विश्वास, विश्वास अपने आप में और ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराणों के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए गए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो।
2: इस आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है शारीरिक बल। शारीरिक दुर्बलता के फलस्वरूप ही हम आत्मविश्वास खो बैठते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने युवकों को शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने का उपदेश देते हुए कहा,
3: सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए, धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो, मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि कांटा कहां चुभता है, मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारी रगों और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा होगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तुम उपनिषद तथा आत्मा की महानता को अच्छी तरह समझ सकोगे।
0: शारीरिक शक्ति के अभाव में ही हमें सब प्रकार के दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं,
3: दुख भोग का एकमात्र कारण है दुर्बलता। हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम दुख भोगते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। जहां हमें दुर्बल कर देने वाली कोई चीज नहीं, वहां न मृत्यु है न दुख। बल ही एकमात्र आवश्यक वस्तु है। बल की भवरोग की एकमात्र दवा है। धनिकों के द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अज्ञजनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी यही एकमात्र दवा है। देह में शक्ति नहीं, हृदय में उत्साह नहीं, मस्तिष्क में प्रतिभा नहीं, क्या होगा रे इन जड़ पिंडों से। मैं हिला डुला कर इनमें स्पंदन लाना चाहता हूं, इसलिए मैंने प्राणांत प्रण किया है कि वेदांत के अमोघ मंत्र से इन्हें जगाऊंगा। उत्तिष्ठित जागृत इस अभय वाणी को सुनाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है।
0: शारीरिक बल के साथ ही उन्होंने मानसिक बल की आवश्यकता पर भी बड़ा जोर दिया था। मनुष्य के एकांगी विकास के वे पक्षपाती नहीं थे। उनका कहना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए शारीरिक और मानसिक शक्ति के सम्यक विकास के लिए नवयुवकों को उद्बुद्ध करते हुए वे कहते हैं,
3: अब तुम्हें महावीर के जीवन को अपना आदर्श बनाना होगा। देखो वे कैसे श्री रामचंद्र की आज्ञा मात्र से विशाल सागर को लांग गए। उन्हें जीवन या मृत्यु से कोई नाता नहीं था। वे पूर्ण रूप से इंद्रजीत थे और उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। अब तुम्हें अपना जीवन दास्य शक्ति के उस महान आदर्श पर खड़ा करना होगा। उसके माध्यम से क्रमशः अन्य सारे आदर्श जीवन में प्रकाशित होंगे। गुरु की आज्ञा का सर्वतोभावेन पालन और अटूट ब्रह्मचर्य, बस यही सफलता का रहस्य है। हनुमान एक ओर जैसे सेवा दर्श के प्रतीक हैं, वैसे ही दूसरी ओर सिंह विक्रम के भी प्रतीक हैं। सारा संसार उनके सम्मुख श्रद्धा और भय से सिर झुकाता है।
0: इस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन से शारीरिक और मानसिक शक्ति से युक्त हो वे नवयुवकों को अपना जीवन भारत भारती की सेवा में लगा देने का आह्वान करते हुए ज्वलंत भाषा में कहते हैं,
3: जाओ जाओ तुम सब लोग वहां जाओ जहां प्लेग फैला हो, जहां दुर्भिक्ष काले बादलों की भांति छा गया हो, जहां लोग दुख कष्ट के भार से पीड़ित हों, और जाकर उनका दुख हल्का करो। अधिक से अधिक क्या होगा, यही ना कि इस प्रयत्न में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर उससे क्या, तुम्हारे समान कितने ही लोग कीड़ों की भांति प्रतिदिन जन्म ले रहे हैं और मरते जा रहे हैं। इससे इस विशाल दुनिया का भला कौन सा टोटा हो जाता है। तुम्हें मरना तो होगा ही, और फिर एक महान आदर्श लेकर क्यों ना मरो। जीवन में एक आदर्श लेकर मर जाना कहीं बेहतर है। द्वार द्वार इस आदर्श का प्रचार करो, और इससे तुम्हारी अपनी उन्नति तो होगी ही, साथ ही तुम अपने देश का भी कल्याण करोगे। तुम ही पर सारे देश का भविष्य निर्भर है, उसकी भावी आशाएं केंद्रित हैं। तुम्हें अकर्मण्य जीवन बिताते देखकर मुझे मार्मिक पीड़ा होती है। उठो उठो, काम में लग जाओ, शीघ्र शीघ्र। इधर उधर मत देखो, समय मत खाओ। दिन पर दिन काल तुम्हारे अधिकाधिक निकट आता जा रहा है। ये सोचकर निठल्ले मत बैठे रहो कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। ध्यान रखो, ऐसा करने से कुछ भी ना हो सकेगा।
2: आगे वे और भी उदाहरण देते हुए कहते हैं,
3: ए नवयुवकों, मैं गरीबों मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और अथक प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें सौंपता हूं। जाओ, इसी क्षण जाओ और उन पार्थ सारथी के मंदिर में जो गोकुल के दीन दरिद्र ग्वालों के सखा थे, जो गोहक चांडाल को भी गले से लगाने से न हिचके, जिन्होंने अपने बुद्धावतार में अमीरों का न्योता अस्वीकार कर एक वीरांगना का न्योता स्वीकार किया और उसे उबारा, जाओ उनके पास, साष्टांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महाबलि दो, अपने जीवन की बलि दो उन दीन पतित और उत्पीड़ितों के लिए जिनके लिए भगवान युग युग में अवतार लिया करते हैं और जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करती हैं।
0: जनता जनार्दन की निष्काम सेवा को ईश्वर की सच्ची पूजा बताते हुए उन्होंने कहा था,
3: सारी उपासना का सार है पवित्र होना और दूसरों की भलाई करना। जो शिव को दीन हीन में, दुर्बल में और रोगी में देखता है, वही वास्तव में शिव की उपासना करता है। और तो शिव को केवल मूर्ति में देखता है, उसकी उपासना तो केवल प्रारंभिक है। जो मनुष्य शिव को केवल मंदिरों में देखता है, उसकी अपेक्षा शिव उस व्यक्ति पर अधिक प्रसन्न होते हैं जिसने बिना किसी प्रकार जाति, धर्म या संप्रदाय का विचार किए एक दीनहीन में शिव को देखते हुए उसकी सहायता और उसकी सेवा की है।
0: नारी जाति का निरादर भी देश के पतन के प्रमुख कारणों में से एक है। शक्ति स्वरूपा नारी का सम्मान न करने के कारण ही ये देश हजारों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा है। नारी उत्थान के द्वारा देश के नव जागरण की संभावना पर जोर देते हुए स्वामी जी ने कहा,
3: सभी उन्नत राष्ट्रों ने स्त्रियों को समुचित सम्मान देकर ही महानता प्राप्त की है। जो राष्ट्र स्त्रियों का आदर नहीं करते, वे कभी ना बड़े ही हो सके हैं और ना भविष्य में कभी होंगे। यथार्थ शक्ति पूजक तो वो है जो जानता है कि ईश्वर में सर्वव्यापी शक्ति है और जो स्त्रियों में इस शक्ति का प्रकाश देखता है। अमेरिका में पुरुष अपनी महिलाओं को इसी दृष्टि से देखते हैं और उनके साथ उत्तम बर्ताव करती हैं। इसी कारण वे लोग सुसंपन्न हैं, विद्वान हैं, इतने स्वतंत्र और शक्तिशाली हैं। हमारे देश के पतन का मुख्य कारण यह है कि हमने शक्ति की इन सजीव प्रतिमाओं के प्रति आदर बुद्धि नहीं रखी।
2: शक्ति के अप्रतिम संदेश वाहक स्वामी विवेकानंद के ये विचार आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण, प्रासंगिक तथा नवजीवन का संचार करने वाले हैं जितने की पहले थे। आज भी वे राष्ट्र को उत्थान की एक नई दिशा देने में समर्थ हैं।
0: स्वामी जी पूर्ण विकसित पौरुष से संपन्न थे, उनके रग रग में योद्धापन भरा था, इसलिए वे शक्ति के उपासक थे और यही कारण है कि उन्होंने अपने देशवासियों का उत्थान करने के लिए वेदांत की एक नवीन व्यवहारिक व्याख्या दी। वे सदैव कहा करते थे, केवल शक्ति ही उपनिषदों का संदेश है। उन्होंने चरित्र निर्माण पर सर्वाधिक बल दिया था।
2: एक अन्य व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा था,
3: अन्य जिस चीज की हमें सर्वाधिक जरूरत है वो है एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता। एकता में ही शक्ति है और जब तक हम एक साथ काम करना नहीं सीखेंगे तब तक आवश्यकता अनुसार कुछ कर नहीं सकेंगे। हम भारतवासी आत्मशक्ति में विश्वास खो बैठे हैं और इसलिए हम कुछ भला या महत् कार्य नहीं कर पाते। वस्तुतः यही हमारा एक शोचनीय दोष है।
0: आध्यात्मिक ढोंग का तो स्वामी जी में नाम तक न था, ये चीज उन्हें बिल्कुल असह थी। प्रच्छन्न धार्मिकों से वे कहा करते थे, मुक्ति गीता के द्वारा नहीं, फुटबॉल खेलने से आएगी। वेदांती होकर भी वे भगवान बुद्ध के बड़े भक्त थे। एक दिन वे अत्यंत उत्साहपूर्वक बुद्ध देव के बारे में बोल रहे थे कि बीच में ही कोई पूछ उठा, स्वामी जी क्या आप बौद्ध हैं? सुनते ही स्वामी जी के मन में भावुकता उमड़ आई और वे रुंधे कंठ से कह उठे,
3: क्या मैं बौद्ध? मैं तो बुद्ध के दासों का भी दास हूँ।
2: भगवान बुद्ध का प्रसंग आते ही वे अत्यंत विनम्र हो जाते थे और कहते थे,
3: शंकराचार्य की मेधा और बुद्ध देव के हृदय को हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा।
0: इसी प्रकार जब एक बार वे ईसा मसीह पर व्याख्यान दे रहे थे तो किसी के प्रश्न करने पर वे गंभीर हो उठे और फिर अपनी मधुर वाणी में बोले,
3: मैं नाजरथ के ईसा के समय उपस्थित होता तो अपने आंसुओं से नहीं वरन अपने हृदय के रुधिर से उनके चरण पखारता।
2: अपने दीन दुखी स्वदेशवासियों के प्रति उनका प्रेम सागरमय अथाह था। आपको उनका वो संदेश स्मरण ही होगा। कहो बंधुओं, नग्न भारतवासी, अपड़ भारतवासी, सर्वहारा भारतवासी, मेरा भाई है। जोर से पुकार कर कहो कि भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मेरी दुर्बलता और काप पुरुषता को दूर कर दो माँ, मुझे मनुष्य बनाओ।
0: स्वामी विवेकानंद एक महान विभूति थे। कहते हैं कि आज के जमाने में जो समस्याएं हैं उनके उत्तर स्वामी जी की शिक्षाओं में प्राप्त होते हैं। स्वामी जी के जीवन तथा उपदेशों से केवल इस देश को ही नहीं बल्कि सारे संसार को केवल आज ही नहीं बल्कि हमेशा फायदा पहुंचता रहेगा।
2: जब स्वामी जी पैदा हुए थे उस वक्त इस देश की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में कुरीतियां थी, धर्म में बहुत से अंधविश्वास पैदा हो गए थे, धर्म बड़ा तंग हो गया था। स्वामी जी ने एक बार कहा था कि हमारे देश में हमारे धर्म और समाज के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, इन दीवारों को हमें तोड़ना है। उन्होंने कहा था, जनता से प्रेम ही असली जीवन है, दूसरों से नफरत मौत है। उन्होंने कहा था, उदार होना जीवन है, तंग होना मौत है।
0: लोगों ने इसका अर्थ ये बताया कि स्वामी विवेकानंद का पवित्र और शांत हृदय भगवत हृदय के साथ एकाकार हो गया था, इसलिए वे सर्व भूतों के प्रति सहानुभूति संपन्न हुए थे। हम लोगों को भी उसी पथ का अनुसरण करना होगा।
1: ठाकुर के चरणों में बैठकर ही स्वामी जी यह समझ सके थे, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। कारण जो कुछ है सो तू ही है। अपनी इस विराट अनुभूति के पश्चात ही स्वामी जी ने कहा था, चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो, मैं अपने जगत के सभी दुखी दरिद्रों की सेवा के लिए हजारों बार जन्म लेने को तैयार हूं।
2: भविष्य दृष्टा स्वामी जी ने काफी वर्षों पूर्व ही कह दिया था कि चीन वासियों में से एक विशेष जन जागरण आएगा और वे लोग भारत वर्ष पर भी आक्रमण कर उसे वशीभूत करने का प्रयास करेंगे। जिन स्वामी जी ने चीनियों द्वारा भारतवर्ष पर आक्रमण की बात कही है, उन्होंने ही फिर योग दृष्टि से अपनी मातृभूमि के महाजागरण का दर्शन करने के बाद इस बारे में भविष्यवाणी की है।
3: हमारी भारत माता अपनी सुदीर्घ घोर निद्रा से जाग रही है। किसी में भी ये क्षमता नहीं कि इस जागरण को रोक सके। जागृत भारत फिर सोने वाला नहीं, बाहर की कोई भी शक्ति उसे दबाकर ना रख सकेगी। भगवान का अलंघ्य आदेश है कि इस बार भारत वर्ष का अभ्युदय अवश्यम भावी है। देश की दुर्गति प्राप्त जनता के सुख समृद्धि के दिन आसन्न हैं।
0: भारत वर्ष के अधःपतन का दर्शन कर वे अपनी अभूतपूर्व भाषा में कहते हैं,
3: हम लोग आलसी हैं, कर्म विमुख हैं, एकता साधन में अक्षम हैं, भ्रातृ प्रेम से रहित हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या व घृणा करती हैं। यही हमारी वर्तमान शोचनीय अवस्था का स्वरूप है।
0: फिर स्वामी जी हमारे पुनरुद्धार के लिए इन उपायों का निर्देश कर जाते हैं। पहला निर्देश,
3: हमें धर्म के ऊपर प्रतिष्ठित होना होगा। किसी भी सामाजिक या राजनैतिक मतवाद का आंदोलन करने के पूर्व देश को आध्यात्मिकता की रीढ़ से प्लावित कर दो। आत्म तत्व का प्रचार करने के बाद लौकिक या तुम्हारी इच्छा के अनुरूप जो कोई भी ज्ञान अपने आप आएगा। धर्म समन्वय की स्थापना ही भावी भारत के गठन की पहली सीढ़ी है।
2: दूसरा निर्देश,
3: शक्ति ही हमारी एकमात्र आवश्यकता है। आत्मा अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। उठकर खड़े हो जाओ और अपना स्वरूप व्यक्त करो। आत्म चेतना जागृत होने पर देखोगे कि क्षमता, महिमा, निष्ठा, पवित्रता आदि जो कुछ भी वांछनीय है सब अपने आप ही आ जाएगी।
0: तीसरी बात उन्होंने कही थी कि
3: शुद्ध देशभक्तों का गठन करना होगा। लौह के समान दृढ़ पेशी, इस्पात के समान कठोर स्नायु और प्रचंड इच्छा शक्ति से संपन्न बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है।
2: शिक्षा के विषय में कहा कि
3: हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिसके द्वारा चरित्र गठन हो, मन की शक्तियों में वृद्धि हो, बुद्धि बल का विकास हो और व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा हो सके। ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बल आए और मनुष्य निर्माण हो। पाश्चात्य विज्ञान के साथ वेदांत का समन्वय और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और आत्मविश्वास, ये शिक्षा के मूल मंत्र होंगे।
0: उनका पांचवा संदेश था, जन साधारण को सर्वांगीण उन्नति करनी होगी। एक शिक्षायतन के द्वारा गण उन्नति का भाव प्रचारित करना होगा। उसमें शिक्षा प्राप्त प्रचारक गण गरीबों के द्वार पर लौकिक व आध्यात्मिक शिक्षा का वितरण करेंगे। जो शिक्षा और संस्कृति उच्च वर्ग की संस्कृति का स्रोत है, उसे निम्न श्रेणियों में आत्मसात कराना होगा। वर्ण साम्य लाने का यही उपाय है।
2: और अंत में उन्होंने बार बार नारी शिक्षा की बात कही, उन्हें ऊपर उठाना होगा।
0: स्वामी जी की इच्छा थी कि भारत के आध्यात्म विज्ञान और पश्चिम के भौतिक विज्ञान के समन्वय से प्राच्य और पाश्चात्य के बीच एकता स्थापित हो। भारत के धर्म प्रचारक गण पाश्चात्य देशों में जाएंगे और वहां से पाश्चात्य विज्ञान के शिक्षा के फल भारत में लाएंगे।
2: भगवान श्री रामकृष्ण और श्री माँ द्वारा प्रदर्शित मत का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने मठों की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसीलिए उन्होंने बेलूर मठ स्थापित करते समय एक स्त्री मठ स्थापित करने की योजना बनाई थी। माँ शारदा देवी की जन्म शताब्दी के वर्ष 1954 में उनकी ये इच्छा पूरी हुई। स्वामी जी चाहते थे कि सन्यासियों की तरह सन्यासिनियां भी सांसारिक काम वासना को त्याग कर राष्ट्रहित के कार्यों में, विशेषकर नारी शिक्षा के विस्तार में आत्मनियोग करें।
0: स्वामी जी के भारत को यदि एक शब्द में व्यक्त करना हो तो वे थीं एक जागृत देवी। उन्होंने भारत माता की चेतनता का बोध किया था। राजपुताना के अपने एक मित्र को स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा था, मेरी इच्छा है कि मैं अपना समस्त जीवन अपने धर्म तथा अपनी मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दूं।
2: उन्होंने एक व्याख्यान में समझाया था,
3: यदि पृथ्वी में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहां पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति के भीतर क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से यही कहूंगा कि वो हमारी मातृभूमि भारत वर्ष ही है।
0: और भी एक महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने कही है, हमारे ये दीन दुखी देशवासी भाई अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं, आत्मविश्वास खो चुके हैं, इसे दूर करना होगा, उन्हें बताना होगा।
3: भाइयों भाइयों, तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारे भीतर भी अनंत शक्ति है, तुम्हारी उन्नति की अपार संभावनाएं हैं। उठो, जागो, स्वयं पर विश्वास करो और उन्नत मस्तक होकर सभ्य और शिक्षित लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर देखो। महानता और सफलता किसी वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है। विश्वास रखो, लगन और परिश्रम के द्वारा तुम भी महानता और सफलता प्राप्त कर सकते हो।
2: आप और हम सब जिन्होंने स्वामी जी को अपना जीवन आदर्श चुना है, उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि राजनीति हमारे समाज की मौलिक समस्याओं को हल नहीं कर सकती। हमारी समस्याओं के समाधान का, हमारी उन्नति का उपाय है समाज के निम्नतर लोगों को ऊंचा उठाना, उन्हें शिक्षा देना, उन्हें व्यक्तित्ववान बनाना, और इस कार्य का दायित्व आपको और हमें अपने कंधों पर लेना हो।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन, जिसे पेश करेंगे साईं ऐश्वर्य महाशब्दे, और उसके बाद प्रस्तुति दी जाएगी सुंदर लाल करेले द्वारा बांसुरी वादन की। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गायन साईं ऐश्वर्य महाशब्दे का।
1: राग कामोद से प्रारंभ कर रहा हूँ, विलंबित झुमरा ताल में पहली रचना है।

हंसध्वनि। ये राग सभी गुणजन जानते हैं, कर्नाटक शैली का राग है, लेकिन कर्णप्रिय और मधुर होने के साथ साथ ये राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी उतना ही प्रभावी है जितना दक्षिण भारतीय भारत में है।

श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक एलपीजी का सातवां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में सात अजूबे हैं, धरती पर सात समंदर हैं। शादी के समय सात फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को सात वचन देते हैं, सरगम के सुर भी साथ होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी साथ हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी सात पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या छह क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में छह फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम सात के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार ये लोग, फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, टिफिन। अरे सुन रहे हैं? हाँ? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है के टूटते ही।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं। अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीन ना जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर, अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या? उफ़
5: साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे
5: मालूम है भाई साहब। रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या कर लूं, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस। अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
5: रो,
3: हो गई ना तेरी चाय। हाँ, अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ, करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
1: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहन साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर हाँ। आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हाँ। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, लाओ।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अतपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल, तुम उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी लाओ, लाओ तो।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लाओ लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये
2: हाँ,
0: बताइए अब क्या करूं इस कच्चे पक्के खाने का।
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्य कमेटी

0: वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट।
1: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाओ, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
1: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल, जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पति देव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
1: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
1: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
1: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है। कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
1: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
1: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
1: अच्छा
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
1: क्या?
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
1: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी,
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ, और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तावे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ। यार मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहां से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांसू है। चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा।
0: हाँ, हाँ,
3: देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के।
0: अब जलाओ।
3: जल गया।
0: ये
3: देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर गौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी।
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो, पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी। गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई। कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी। अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये, जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: यही है। क्या लिखा है? बड़ा
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ, अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की बापरे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके, एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा,
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा,
0: समझी?
3: हाँ,
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए। एक
3: जैसी अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ,
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ,
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े।
3: क्या?
0: संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं तबला वादन, जिसे पेश करेंगे मोहम्मद मुईन अल्लाह वाले, और उसके बाद सुनिएगा मीता पंडित का गायन। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तबला वादन, जिसे पेश करेंगे मोहम्मद मुईन अल्लाह वाले।
2: घेना था तिरकट धा देता घेना तेता घेना धागे दीना गिना था।

जब पेश कर रहा हो चूड़ी का मस्त खास आपकी गदे ना

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तबला वादन, जिसे पेश कर रहे थे मोहम्मद मुईन अल्लाह वाले, और अब बारी है मीता पंडित के गायन की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मीता पंडित का गायन। आज का कार्यक्रम भारत भारती बस यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 154 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विष्णु और छंद है त्रिष्टुप।
2: विष्णोर्नु कम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि, यो अस्क भायदुत्तरम सदस्थम विचक्रमाणेस्त्रे धोरुगायः। जो पृथ्वी अंतरिक्ष तथा द्युलोक को बनाने वाले हैं, जो देवताओं के निवास स्थान द्युलोक को स्थिर कर देते हैं, जो तीन पगों से तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं, उन विष्णुदेव के वीरता पूर्ण कार्यों का कहां तक वर्णन करें। प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्यो रुषु त्रिषु विक्रमणेष्व धिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा। विष्णुदेव के तीन पदों पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक में संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, अतएव भयंकर हिंस्र और गिरिकंदराओं में रहने वाले पराक्रमी पशुओं की तरह सारा संसार उन विष्णुदेव के पराक्रम की प्रशंसा करता है। प्रविष्णवे शूसमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय विष्णे य इदं दीर्घं प्रयतं सदस्तमेको विममे त्रिभिरित पदेभिः। अकेले ही जिन विष्णुदेव ने मात्र तीन कदमों से इस अति व्यापक दिव्य लोक को नाप लिया था, उन मेघों में स्थित अत्यंत प्रशंसनीय जल वृष्टि में सहायक सूर्य रूप विष्णुदेव के लिए प्रखर भावना से उच्चारित हमारा स्तोत्र समर्पित है। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्य क्षीयमाणा स्वधया मदन्ति य उ त्रिधातु पृथिवी मुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा। जिन विष्णुदेव के तीन अमृत चरण अपनी धारण क्षमता से तीन धातुओं सत रज और तम से पृथ्वी एवं द्युलोक को आनंदित करते हैं, वे विष्णुदेव अकेले ही सारे भुवनों लोकों के एकाकी आधार हैं। तदस्य प्रियमभिपाथो अश्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सह। देवों के उपासक मनुष्य जहां पहुंचकर विशेष रूप से आनंद की अनुभूति करते हैं, विष्णु देव के उस प्रिय धाम को हम भी प्राप्त करें। विष्णु देव महापराक्रमी वीर इंद्र के बंधु हैं। विष्णु देव के उस उत्तम धाम में अमृत जल धारा सदा ही प्रवाहित रहती है। तावाम वास्तुन्युष्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्रृंगा आयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि। हे इंद्र और वरुण देव, आप दोनों से हम यजमान दंपति अपने निवास के लिए ऐसा आश्रय स्थल अर्थात गृह चाहते हैं जहाँ अति तीक्ष्ण स्वास्थ्य प्रद सूर्य रश्मियां प्रवेश कर सकें। इन्हीं श्रेष्ठ गृहों में अनेकों से उपास्य सामर्थ्य संपन्न विष्णुदेव के उत्तम धामों की विशिष्ट विभूतियां स्वप्रकाशित होती हैं, अर्थात वहां देव अनुग्रह अनवरत बरसता रहता है।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। शुभ संध्या, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 154 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विष्णु और छंद है त्रिष्टुप।
4: विष्णोर्नु कम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विममे रजांसि, यो अस्क भायदुत्तरम सदस्थम विचक्रमाणेस्त्रे धोरुगायः। जो पृथ्वी अंतरिक्ष तथा द्युलोक को बनाने वाले हैं, जो देवताओं के निवास स्थान द्युलोक को स्थिर कर देते हैं, जो तीन पगों से तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं, उन विष्णुदेव के वीरता पूर्ण कार्यों का कहां तक वर्णन करें। प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः, यस्यो रुषु त्रिषु विक्रमणेष्व धिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा। विष्णुदेव के तीन पदों पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक में संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, अतएव भयंकर हिंस्र और गिरिकंदराओं में रहने वाले पराक्रमी पशुओं की तरह सारा संसार उन विष्णुदेव के पराक्रम की प्रशंसा करता है। प्रविष्णवे शूसमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय विष्णे, य इदं दीर्घं प्रयतं सदस्तमेको विममे त्रिभिरित पदेभिः। अकेले ही जिन विष्णुदेव ने मात्र तीन कदमों से इस अतिव्यापक दिव्य लोक को नाप लिया था, उन मेघों में स्थित अत्यंत प्रशंसनीय जल वृष्टि में सहायक सूर्य रूप विष्णुदेव के लिए प्रखर भावना से उच्चारित हमारा स्तोत्र समर्पित है। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति, य उ त्रिधातु पृथिवी मुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा। जिन विष्णुदेव के तीन अमृत चरण अपनी धारण क्षमता से तीन धातुओं सत रज और तम से पृथ्वी एवं द्युलोक को आनंदित करते हैं, वे विष्णुदेव अकेले ही सारे भुवनों लोकों के एकाकी आधार हैं। तदस्य प्रियमभिपाथो अश्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति, उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सह। देवों के उपासक मनुष्य जहां पहुंचकर विशेष रूप से आनंद की अनुभूति करते हैं, विष्णुदेव के उस प्रिय धाम को हम भी प्राप्त करें। विष्णुदेव महापराक्रमी वीर इंद्र के बंधु हैं। विष्णु देव के उस उत्तम धाम में अमृत जल धारा सदा ही प्रवाहित रहती है। तावाम वास्तुन्युष्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्रृंगा आयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि। हे इंद्र और वरुण देव, आप दोनों से हम यजमान दंपति अपने निवास के लिए ऐसा आश्रय स्थल अर्थात गृह चाहते हैं जहाँ अति तीक्ष्ण स्वास्थ्य प्रद सूर्य रश्मियां प्रवेश कर सकें। इन्हीं श्रेष्ठ गृहों में अनेकों से उपास्य सामर्थ्य संपन्न विष्णुदेव के उत्तम धामों की विशिष्ट विभूतियां स्वप्रकाशित होती हैं, अर्थात वहां देव अनुग्रह अनवरत बरसता रहता है।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 154 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। शुभ संध्या, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद अब समय है अपने मन को शांति और भक्ति के रंग में रंगने का। संगीत वो माध्यम है जो हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है, और भक्ति संगीत तो सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। तो आइए इस संध्या को और भी पावन बनाते हैं भक्ति के मधुर सुरों और दिव्य भावनाओं के साथ, जहाँ हर भजन में है आस्था, हर सुर में है समर्पण और हर शब्द में है प्रभु का।

श्रोताओं, संध्या का समय अपने आप में बहुत पावन होता है। जब डूबते सूरज की लालिमा आकाश को सुनहरा बनाती है, जब मंदिरों की घंटियां वातावरण में मधुर ध्वनि खोलती हैं, और जब मन अपनी आराध्य की भक्ति में खो जाना चाहता है। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

रिश्ते की यही शक्ति है जो टूटे मन को सहारा देती है, भटके हुए को मार्ग दिखाती है और निराश जीवन में आशा का दीप जलाती है।

इसी के साथ आज का ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारतीय इतिहास की अमर वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल राजा शालिवान के घर हुआ था। सन 1542 में उनका विवाह गौंड शासक दलपति शाह से हुआ और उनका वैवाहिक जीवन मात्र 8 सालों का रहा। 26 साल की उम्र में वो विधवा हुई और अपने अवयस्क पुत्र वीर नारायण की ओर से उन्होंने शासन संभाला। दुर्गावती ने 16 सालों तक जिस कौशल से गोंडवाना राज्य का शासन चलाया, उसकी प्रशंसा के पन्ने इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। इतना बड़ा राज्य तब मध्य और उत्तर भारत में कोई दूसरा नहीं था। आईने अकबरी में मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने तत्कालीन गोंडवाना राज्य की समृद्धि और व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि दुर्गावती की प्रजा स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से लगान अदा किया करती थी। 1400 हाथी तो केवल राजधानी गढ़ा मंडला के हाथी खाने में ही थे। अपने विशाल राज्य के 23,000 गांवों की देखरेख करने के लिए रानी दुर्गावती ने आधे से अधिक गांवों में एक एक शीतकार नियुक्त किया था। उन्होंने इतने तालाब खुदवाए कि पीने के अलावा सिंचाई कार्य के लिए किसानों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। आज के जबलपुर नगर में रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल हैं, जिसका निर्माण दुर्गावती ने करवाया था, जिन्हें रानी, उनकी सेविका और दीवान आधार सिंह के नाम से जाना जाता है। उनके शासित भूखंड की संपन्नता और प्रसिद्धि ने उनके कई शत्रु पैदा कर दिए। मालवा का राजा बाज बहादुर हो या दिल्ली के शहंशाह अकबर, सबकी नजर गोंडवाना के अकूत खजाने पर थी। बाज बहादुर के आक्रमण से रानी ने न केवल अपनी वीरता से मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि दो बार ऐसी जबरदस्त पराजय दी कि फिर उसने गढ़मंडला राज्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं की।

सन 1561 में बास बहादुर का मालवा भी अकबर के अधीन हो गया। कहते हैं बास बहादुर ने ही अकबर को गोंडवाना पर चढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने रानी दुर्गावती से उनका विख्यात सफेद हाथी सरमन मांगा था और साथ ही उनके बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की भी मांग की थी। रानी ने दोनों के लिए स्पष्ट इनकार करते हुए अकबर बादशाह के संदेश की अवहेलना की। इस बात से अकबर ने स्वयं को अपमानित महसूस किया और अपने एक सेनापति असफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर धावा बोलने के लिए विशाल फौज भेज दी। आसफ खां ने 10,000 घुड़सवारों, 12,000 पैदल सैनिकों और सशक्त तोपखाने के साथ 1564 में चढ़ाई कर दी। उसने सबसे पहले रानी के निवास स्थान सिंगोरा गढ़ किले पर कूच किया। रानी को अचानक हमले का अंदाजा नहीं था, पर वीर रानी पीछे नहीं हटी। रानी के पास लगभग 2,000 पैदल सेना थी। सभी ने युद्ध करने का निश्चय किया। रानी ने वस्तु स्थिति को भापकर गड़ा में युद्ध करने की योजना बनाई। नरहरी ग्राम के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के मध्य एक सकरी घाटी में उन्होंने मोर्चा जमाया। रानी की योजना अनुसार मुगल सेना चारों तरफ से घिर गई। 500 मुगल सैनिक मारे गए और बचे हुए सैनिक भाग गए। इस तरह से पहला दिन रानी की जीत का रहा, लेकिन दूसरे दिन मुगलों की सेना में तोपखाना आ गया। रानी के पास तोपखाना नहीं था। तीर कमानों और तलवारों से तोपखाने का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। फिर भी सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देकर शत्रुओं पर बाणों की अटूट वर्षा की।

हाथी पर सवार रानी ने रौद्र रूप धारण किया और बाण पर बाण चलाए। तभी एक तीर रानी की आंख में आकर लगा। रानी तीर निकालकर पुनः मोर्चे पर सक्रिय हो गई। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। तब आगे तोप थी और पीछे नदी का तूफान। फिर भी वीरांगना दुर्गावती डटी रही। महावत द्वारा नदी पार के आग्रह पर रानी ने कहा कि या तो मैं शत्रु को मार भगाऊंगी या स्वयं यही मर जाऊंगी। पर नियति का फैसला कुछ और ही था। एक तीर आकर रानी के गले में लग गया। राजकुमार वीर नारायण ने रानी की हिफाजत करने की कोशिश की, लेकिन वो शहीद हो गए। रानी की घायल अवस्था, प्रकृति का दुष्चक्र, दुश्मनों की तोपों की बरसात और राजकुमार वीर नारायण की मृत्यु, इन सभी के आगे रानी की सेना ने आत्मबल खो दिया और तितर बितर हो गई। रानी को अपनी हार और पराधीनता साफ दिखाई देने लगी। रानी ने महावत से कटार छीनकर देश के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए। 24 जून सन 1564 को रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास ने बड़े गर्व के साथ अपने सीने पर रानी दुर्गावती की कहानी को अंकित किया है। एक ऐसी रानी जो पराजित होकर भी कभी पराजित नहीं हुई। रानी दुर्गावती जो आज भी अमर है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
2: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।
3: मैं हूं रणजीत सावरकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। इसके अंतर्गत आज सुनिए देवगढ़ किले की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा। इस कार्यक्रम की 14वीं कड़ी को लेकर आपके सामने हाजिर हूं।

0: हर बार की तरह हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पूजा सक्सेना यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका एक बार फिर से।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, हम गोंड राज्य शासन के बारे में बात कर रहे हैं। 13वीं कड़ी में यानी कि अपने पिछले एपिसोड में हमने बात की देवगढ़ के गोंड राज्य के बारे में। पिछली बार हमने आपको बताया कि छिंदवाड़ा, आज के छिंदवाड़ा में जो देवगढ़ का गोंड राज्य तब हुआ करता था, जाटवा अजानबाहु की हमने कथा सुनी जिन्होंने देवगढ़ का गोंड राज्य स्थापित किया था। उन्होंने किले का दरवाजा अपने हाथों में उठा लिया था और गवली बंधुओं का वध कर वो देवगढ़ राज्य के राजा बने थे। पिछले एपिसोड में ही पूजा जी ने हमें बताया कि उन्होंने किले के निर्माण के लिए स्थान का चुनाव किस प्रकार किया। ऊंची पहाड़ी चुनी और पहाड़ी के ऊपर जल की उपलब्धता भी थी। जानबूझकर देवगढ़ किले तक पहुंचने के लिए सर्पिलाकार मार्ग बनाया और बहुत सारे दरवाजे बनाए ताकि दुश्मन आसानी से किले तक पहुंच नहीं सके। हमने बात की हाथी दरवाजे की और इसके साथ ही हाथियों के लिए मुगलों की चाहत की। मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के बीच मध्य हुए 5 पत्र व्यवहारों की हमने बात की, जिसमें हमने विचित्र हाथी जटाशंकर, जिसके बारे में जनश्रुतियां थी कि वो बहुत विचित्र हाथी है, विशाल हाथी है, बहुत शक्तिशाली है और वो देवगढ़ गोंड राज्य के पास है, उसे हासिल करना चाहते थे शाहजहां और जिसके लिए औरंगजेब को उन्होंने नियुक्त किया हुआ था। इसके साथ ही हमने बात की देवगढ़ किले के अंदर स्थित कचहरी की, जहां पर राजा विराजमान होते थे, नक्कार खाने की, जहां राजा के आगमन पर नगाड़े बजते थे, बादल महल और उसमें स्थित टेराकोटा पाइपलाइंस की और उससे चलने वाले फव्वारों के पीछे के विज्ञान की और साथ ही किस किले के परिसर को किस तरह सुरक्षित किया जाता था। लेकिन अब हम इसी बारे में, सुरक्षा के बारे में विस्तार से आज जानेंगे डॉक्टर पूजा सक्सेना से। तो सबसे पहले पूजा जी से यही पूछते हैं कि किले की जो सुरक्षा थी उसके क्या इंतजाम थे।
1: जैसा हमने पिछली बार भी बात की थी कि किले को सुरक्षित रखने के लिए ऊंची पहाड़ी का चयन किया गया और ऐसी पहाड़ी जिस पर पानी की उपलब्धता हो, रसद हो, आसपास जंगल था, खेत रहे होंगे तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन किले की सुरक्षा का खतरा तो हमेशा ही मंडराता रहता है, इसलिए किले को बहुत सुरक्षित करने के लिए उसके चारों ओर दीवारें बनाई जाती हैं। तो देवगढ़ के किले में भी हमने देखा सर्पिलाकार मार्ग है और उस पर जाते हुए कई सारे दरवाजों से होकर हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन ठीक है, दरवाजे तक तो आप अंदर आ गए, लेकिन इन दरवाजों से जुड़ी हुई पहाड़ी पर चारों ओर ऊंची ऊंची किले की दीवारें हैं, जिसे हम नॉर्मली फोर्टिफिकेशन वॉल बोलते हैं, है ना। और ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं, किले की दीवार आपने देखी ही होंगी कैसी होती है, चौड़ी और ऊंची दीवारें और उसके ऊपर कंगूरे बने होते हैं ना, जहां से चौकसी के दौरान देखा जा सकता है। इसके साथ ही एक और बात जो मैंने देवगढ़ के किले की दीवार में देखी वो ये थी कि दीवारों में स्लिट्स बने हुए हैं, यानी आयताकार छेद, लंबे लंबे छेद,
0: जिससे कि कुछ हथियार निकाले जा सके, तोप या बंदूक भी निकाल के इस्तेमाल की जा सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इन स्लिट्स का इस्तेमाल जैसा आपने कहा हथियार चलाने के लिए होता है और दूसरा निगरानी रखने के लिए भी होता है
0: जी।
1: तो यहाँ पर खास बात क्या है कि एक एक स्लिट्स में के तीन तीन पार्ट्स हैं
0: जी,
1: तीन, कहीं पांच और कहीं कहीं तो 7 भी देखे मैंने। अगर आप किले के अंदर से इन स्लिट्स से बाहर की ओर देख रहे हैं, किले के बाहर की ओर देख रहे हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी नजर जम जाएगी। यानी कि अगर कोई शत्रु इस जगह से आ सकता है, स्लिट से देखने पर बिल्कुल वही जगह आपको दिखाई देती है।
0: ये तो बिल्कुल मतलब किसी कैमरे के व्यू फाइंडर की तरह हो।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, ऐसा ही है। एकदम इतना सटीक निर्माण कैसे किया होगा, ये तो बहुत मुझे तो लगता है कि ये बड़ी ज्ञान परंपरा की बात है जो परंपरागत रूप से सदियों से चलती आ रही होगी, लेकिन देवगढ़ किले में उसका बहुत अच्छा उपयोग किया है। तो हम देखते हैं कि किले की सिर्फ एक ही दीवार नहीं है, ये जो पहाड़ी है ये तीन ओर से बिल्कुल खड़ी हुई है, यानी इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक ओर से पहाड़ी थोड़ी ढलवा है, तो जिस ओर से पहाड़ी ढलवा है वहां दोहरी दीवार बनाई गई है, यानी कि कई सुरक्षा चक्र होंगे। अगर पहाड़ी पर दुश्मन सेना चढ़ भी गई है तो पहले एक दीवार को पार करना होगा, यदि उसमें वो सफल हो जाती है तो फिर दूसरी दीवार की चुनौती उसको मिलेगी। तो इस तरीके से दोहरी दीवार उस तरफ है जहां ऊंची पहाड़ी है
0: जी।
1: और इन दीवारों में बहुत सारे बुर्ज भी बने हैं। पहले हमने बात की थी एक बुर्ज की, जिस पर मैंने बताया था कि चंडी देवी का मंदिर भी बना हुआ है
0: जी,
1: क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारी मान्यताएं हैं। हमने जाटवा की कहानी भी सुनी थी जिसमें उन्होंने भैंस का वध करके शक्ति प्राप्त की थी। ये चंडी देवी का मंदिर एक बुर्ज पर है, पर वास्तव में ये बुर्ज जो है सुरक्षा चौकियों की तरह होते हैं जो किले के ऊपर से खड़े होकर सैनिक नीचे की तरफ देखते हैं, चारों ओर निगरानी रखते हैं। तो एक तो ये वाली बुर्ज है और इस बुर्ज पर चढ़ने के लिए चौड़ी रैंप बनी हुई है। आपको मालूम होगा कि ये रैंप इसलिए बनाई जाती है कि जो तोप होती है उसको धका धका के ऊपर तक बुर्ज के ऊपर सेटल कर देते हैं, तो फिर वो बुर्ज जो है कई दिशाओं में वार करने लायक हो जाती है ऊंचाई से। तो इसी तरीके से और भी कई सारी बुर्ज हैं, लेकिन जहां ये चंडी देवी वाला बुर्ज है उसके बिल्कुल अपोजिट एक और बुर्ज है।
0: अच्छा,
1: मुझे याद है कि मैं 2003 में काम कर रही थी देवगढ़ किले में, तो जहां हम लोगों को बड़ी समस्या होती थी पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ के जाना, हांफ जाते थे और बड़ा दुर्गम लगता था, यहाँ तक कि गाड़ी भी जो है हांफने लगती है, बड़ी धीमे धीमे धीमे चढ़ती थी। लेकिन वहां के जो गोंड थे वो इतनी तेजी से पैदल चढ़ते हुए पहाड़ी पर आ जाते थे और कई बार उतर जाते कई बार चढ़ जाते, उनके लिए तो मतलब

0: व्यवस्था में
1: जी
0: आप किले से जो सामने वाली पहाड़ियां हैं वहां तक यदि संदेश पहुंचाना चाहते हैं,
1: जी
0: तो उस तरीके विविध प्रकार की उन्होंने उस तरह की कई आवाजें सुनिश्चित कर रखी होंगी, जिनका उपयोग करके आपस में बात की जा सकती होगी, संकेत दिए जा सकते होंगे
1: बिल्कुल
0: कि सुरक्षित है या सुरक्षित है, कि कोई भी इस
1: बिल्कुल
0: तरीके
1: बिल्कुल
0: के मैसेज उसके
1: जी,
0: माध्यम से दिए
1: मतलब
0: जाते
1: मात्र
0: होंगे।
1: किले के अंदर और ऊपर ही ऐसे लोग नहीं थे जो नीचे नजर रख रहे थे, समतल भूमि पर भी 5 किलोमीटर दूर आप बता रहे हैं कि ऐसे लोग
0: बिल्कुल
1: तैनात रहते थे जो अगर किसी भी गतिविधि को ऐसे देखें और उन्हें किले तक पहुंचने में तो क्योंकि वक्त लगेगा तो ऐसी कुछ आवाजें निकालते जो किले तक पहुंच जाएं और किले से वो आवाजों का प्रत्युत्तर दिया जाता था।
0: बहुत ही ये ध्यान देने योग्य बात है। अब धीरे धीरे लोग इसको भूलते जा रहे हैं कि ये होता कैसे था, आवाजें किस तरीके की निकाली जाती थी। इसके साथ ही मैंने देखा कि उनको औषधि का भी बड़ा अच्छा ज्ञान है। हम लोग देव उठनी 11 करते हैं ना,
1: जी
0: जो देव उठनी 11 है उससे पहले आपको बहुत सारी परिक्रमाएं करनी है
1: जी
0: और ज्ञान को दोबारा अर्जित करना,
1: जी
0: ये वो समय होता है,
1: जी
0: ऐसा हम लोग हमारी परंपरा में है। तो मैंने यहाँ भी देखा कि जो गोंड हैं वो भी इन दिनों में जगह जगह घूमते हैं।
1: अच्छा
0: मतलब किसी पहाड़ पर चले गए, किसी नदी तक चले गए, और करते क्या है, ये लोग औषधियां ढूंढते हैं, औषधियों के बड़े अच्छे जानकार हैं, और उन औषधियों को बटोरते हैं और फिर साल भर उनका उपयोग करते हैं अलग अलग तरीके से।
1: अच्छा
0: तो वो भी एक ज्ञान परंपरा इनके साथ में जुड़ी हुई है।
1: तो श्रोताओं कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमें पूजा जी के माध्यम से मिल रही हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 14वीं कड़ी आप सुन रहे हैं। जी पूजा जी हम बहुत उत्सुक हैं आगे की कहानी जानने के लिए, आगे के बारे में विस्तार से बताइए।
0: अच्छा, देवगढ़ की दीवार के बारे में मैं एक बात और बता दूं। यहाँ एक और चीज मैंने खास देखी
1: जी
0: कि दीवार क्योंकि बहुत चौड़ी होती है तो उसमें कई कक्ष निकल आते हैं जो कि सैनिकों के रहने के लिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने देखा कि दीवार में ही कुछ कक्ष ऐसे भी हैं छोटे छोटे जो कि टॉयलेट की तरह यूज किए जाते थे।
1: अच्छा मतलब उस जमाने में उन्होंने टॉयलेट्स का निर्माण किया था वहाँ।
0: जी हाँ, 400-500 साल पहले टॉयलेट्स बने हुए हैं जिसका जो मैला है
1: जी
0: वो किले के बाहर जिस तरफ उपयोग नहीं होता,
1: जी
0: जंगल है उस तरफ निकल जाया करता
1: जी
0: होगा।
1: लेकिन पूजा जी पानी का भी बहुत अच्छा उपयोग किया, पाइप्स के बारे में आपने बताया कि इस किले में किस तरह से पाइप्स और फव्वारे वगैरह चलते थे। लेकिन एक तो उस समय हम बहुत बार सुनते हैं कि न सिर्फ उस समय बल्कि आज़ादी के समय भी, और गांधी जी ने भी इस बात का, इस परंपरा का बहुत विरोध किया था, क्योंकि हम तो ये तक सुनते आए हैं कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश में मैला ढोने की परंपरा रही है, तो क्या ये उस वक्त नहीं थी इस किले में?
0: जी हाँ, मैला ढोने की परंपरा भारतीय नहीं है।
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ, आपने सुना होगा बल्कि अब तक बहुत कुछ समय पहले तक भी हम देखते थे कि खुले में शौच जाने की परंपरा है
1: जी।
0: और भारत में टॉयलेट निर्माण की परंपरा तो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी दिखाई देती है
1: जी।
0: ये मैला ढोने की जो परंपरा आई ये बहुत बाद में थी। जब भारत पर इस्लामिक आक्रमण होने लगे तो जो लोग धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होते थे किसी भी कीमत पर, उनको सजा के तौर पर ये दिया जाता था कि उन्हें अपने सर पे मैला ढोना पड़ेगा।
1: तो उन्हें ह्यूमिलेट करने के लिए ये बनाया गया।
0: बिल्कुल, मतलब ये जानकर हैरानी होती है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी कीमत पर धर्मांतरण नहीं किया और वो मैला तक ढोने के लिए तैयार हो गए।
1: पूजा जी आपने किले के अंदर तो जो सुरक्षा व्यवस्था थी, सुरक्षा दीवार, दोहरी सुरक्षा दीवार, इसके बारे में बताया, लेकिन किले के बाहर किस तरह की सुरक्षा थी बिल्कुल इर्द गिर्द, उसके बारे में कुछ बताइए।
0: जो गोंड किले होते हैं
1: जी
0: उनका सुरक्षा चक्र तो जैसे देखने लायक होता होगा और अभी भी उसके अवशेष हैं
1: जी,
0: तो हम जान सकते हैं शोध के माध्यम से कि ये कैसे होता होगा। तो हम अगर देवगढ़ के किले को ही उदाहरण के तौर पर देखें, किला तो अपने आप में सुरक्षित है ही, लेकिन चारों दिशाओं में कुछ दूरी पर और भी चौकियां बनाई गई थी। जैसे यहाँ देवगढ़ का किला है
1: जी,
0: तो उसके बाहर पूर्वोत्तर दिशा में हम देखते हैं कि कुसुम घाट नाम की एक चौकी है।
1: अच्छा,
0: उसके अवशेष आज भी हैं।
1: अच्छा,
0: और उत्तर में एक कालकोट चौकी है। पश्चिम दिशा में अगर सुरक्षा चाहिए तो सूर्य कुंड चौकी है
1: जी,
0: और दक्षिण की तरफ से जौवनी चौकी सुरक्षा दिया करती होगी। तो ये इसको घेरते हुए चारों दिशाओं में जहां आवश्यकता थी
1: जी
0: वहां पर चार चौकियां स्थापित कर दी। इन चौकियों को आप गढ़ी भी बोल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत जगह आपको गढ़ी सुनाई
1: शब्द बुंदेलखंड में खास तौर पर गढ़ी शब्द का इस्तेमाल होता है।
0: जी हाँ, छोटे किले, छोटे गढ़,
1: छोटे किले
0: जी। तो ये जो गढ़ियां हैं या चौकियां हैं, अब देवगढ़ में इनके बाद इनको घेरते हुए दो नदियां भी हैं।
1: अच्छा।
0: और नदियां इनको प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करेंगी। तो जैसे हम देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम दिशा है तो वहां पर से कान्हा नदी बहती है, तो इसने दो दिशाओं को सुरक्षित कर लिया। और उत्तर और पूर्व की दिशा देखेंगे तो वहां पर पेंच नदी बहती है।
1: अच्छा।
0: तो ये चारों दिशाओं को नदियों ने सुरक्षित कर लिया। अब इसके बाद बहुत घना जंगल है
1: जी।
0: तो जंगल अपने आप में बहुत सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें जंगली जानवर होते हैं, उसमें चलना थोड़ा मुश्किल होता है, सेनाओं का मूवमेंट मुश्किल होता है, तो ये अपने आप में सुरक्षा देता है। अब इतना ही नहीं है, अगर देवगढ़ के सुरक्षा चक्र को और दूर तक देखा जाए, 100, 200, 250 किलोमीटर की दूरी पर
1: जी।
0: तो भी आपको गोंड किलों की एक ऐसी श्रृंखला दिखेगी जो कि वृत्त में है, मतलब चारों दिशाओं से सुरक्षित कर देगी।
1: जी
0: हाँ, गोलाकार है। जैसे हम देखते हैं कि उत्तर में गोंडों का किला है चौरागढ़, आजकल नरसिंहपुर जिले में
1: जी।
0: इसी तरीके से पूर्वोत्तर में देखें तो आज का जो सिवनी जिला है वहां पर छपरा का किला है।
1: अच्छा।
0: और पूर्व में देखें तो लांजी का किला है, ये बालाघाट जिला है आजकल
1: जी जी।
0: और इसी तरीके से दक्षिण पूर्व में अगर हम देखें तो सानगढ़ी का किला है
1: जी।
0: इसी और प्रतापगढ़ का किला भी है जो गोंदिया जिले में।
1: ये तो महाराष्ट्र पहुंच गए हम आज।
0: जी
1: हाँ,
0: महाराष्ट्र तक जी, बिल्कुल। अगर महाराष्ट्र में ही देखें तो देवगढ़ से दक्षिण दिशा में अंबागढ़ का किला है
1: जी।
0: और इसी ओर पवनी का किला भी है जो भंडारा जिले में है महाराष्ट्र के
1: जी।
0: तो इस तरीके से पूरी एक श्रृंखला बनते हुए अब हम पहुंच जाते हैं नागपुर।
1: अच्छा।
0: और नागपुर में नागपुर का खुद किला है जो कि एक हिस्सा उसका गोंड है, और दूसरा उमरेड़ की गढ़ी भी है नागपुर में।
1: अच्छा।
0: और अगर हम यहाँ से पश्चिम जाएं देवगढ़ से, खेरला का किला है आजकल बैतूल जिला जिसे हम कहते हैं, और पश्चिमोत्तर में फतेहपुर का किला है होशंगाबाद जिले में।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो इस तरह ये पूरे किलों ने देवगढ़ के किले को घेर रखा है, और ये सभी गोंड किले हैं
1: जी।
0: तो ये एक विस्तृत सुरक्षा चक्र की तरह हमें धरती पर दिखाई देता है।
1: तो न सिर्फ देवगढ़ का किला, मान लीजिए अगर होशंगाबाद का किले पर आफत आती है तो दूसरी जगह से भी कोई सहायता मिल सकती
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: तो सभी किले एक दूसरे को एक तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, पूरी तरह से एक दूसरे के लिए सुरक्षा चक्र ये बना हुआ है।
0: जी हाँ, हर किले का अपना एक सुरक्षा चक्र है और वो दूसरे से भी मिक्स होता है
1: जी।
0: तो इस तरीके से एक पूरा जाल जैसा है।
1: क्या बात है, ये बहुत हैरत की बात है। तो देवगढ़ के किले के चारों ओर आपने बताया कि छोटी छोटी गढ़ियां थी, इसके अलावा क्या था? और
0: किले की पहाड़ी की ढलान पर अगर हम देखें
1: जी,
0: तो कई सारी मढ़िया दिखाई देती हैं।
1: अच्छा।
0: ये मढ़िया क्या हैं? छोटे छोटे कक्ष हैं जिनकी वॉल्ट छत है या गुम्बजाकार छत है। एक तो इनमें से राजा जाटवा की समाधि है।
1: अच्छा।
0: तो उस समय समाधि कैसे बनाई उन्होंने कि एक कक्ष है और उसके अंदर शिवलिंग स्थापित है, तो राजा जाटवा शिव के बड़े भक्त रहे होंगे ऐसा लगता है उसको देखकर। तो ऐसी कई सारी समाधियां हमको कई सारे राजाओं की या राज परिवार की किले की पहाड़ी की ढलान पर दिखाई देती हैं। और जब हम ढलान से नीचे उतरते हैं तो आज भी वहां पर पुराने गांव हैं जिसमें आज भी लोग रहते हैं, और आसपास सागौन का बड़ा घना जंगल है। पर किले से जब हम नीचे उतरें तो कई सारी बावड़ियां हैं जो उस समय पानी के लिए उपयोग आती होंगी। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए भी बावड़ियों का उपयोग होता था क्योंकि वहां ठंडक रहती है।
1: अच्छा।
0: तो गर्मियों में वहां पर बैठ गए। तो ऐसी कई सारी बावड़ियां वहां पर हैं, कई सारे तालाब भी हैं जिनमें वर्षा का जल संग्रहित होता होगा, यानी कि एक एक बूंद को संग्रहित करके साल भर के लिए रखा जाता था। आज भी ये तालाब और बावड़ियां हैं। इसमें से एक तो चोर बावड़ी है।
1: चोर बावड़ी।
0: जी हाँ, चोर बावड़ी। बड़ी सारी किंवदंतियां हैं उसमें, किसी चोर की कहानी है, किसी की कहानी है, लेकिन इस तरीके की जो चोर बावड़ियां होती हैं असल में, ये जब राज परिवार यात्राएं करता है या फिर जब युद्ध होते हैं तो उस समय ये छिपने के भी काम आती
1: है।
0: तो इनका प्रवेश द्वार कहाँ से है वो पता नहीं चलता, लेकिन जो वहां का रहने वाला उसे मालूम है सिर्फ कि इसका प्रवेश द्वार कहाँ से है। तो अंदर ही अंदर निकलते हुए कई सारे कमरे और टनल्स वगैरह होती हैं।
1: हाँ, तो कई तो सारी ऐसी जनश्रुतियां होती हैं कि महल के नीचे से सुरंग थी जो कहीं से कहीं पहुंच जाती थी, कुछ इसी तरह की बात।
0: जी जी, बिल्कुल
1: जी।
0: तो ये चोर बावड़ी बड़ी देखने लायक है। इसके अलावा मेरा एक बड़ा फेवरेट मॉन्यूमेंट है देवगढ़ का, किले की तलहटी में एक स्मारक है, उसका नाम है किसबन महल।
1: अच्छा।
0: जी हाँ, और जैसे हम श्रुतियों में कुछ याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं
1: जी,
0: तो यहाँ भी बड़ी ध्यान से इस स्मारक को देखें तो ये कृष्ण का शायद कोई मंदिर रहा होगा।
1: अच्छा
0: हाँ, और नाम देखिए किस्बन महल, वो कृष्ण वन है।
1: अच्छा, वो हाँ, अपभ्रंश होते होते कृष्ण वन से किस्बन हो गया,
0: किस्बन हो गया। तो जब हम किले की तलहटी में आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा मैनमेड तालाब है
1: जी,
0: तीनों ओर उसके सीढ़ियां बनी हुई हैं और किले की पहाड़ी से बहता हुआ वर्षा का जल इसमें इकट्ठा होता होगा। और एक और ये कृष्ण वन या किस्बन बना हुआ है
1: जी।
0: तो ये मंदिर है, बिल्कुल स्पष्ट इसका स्थापत्य है, इसमें गर्भगृह है, उसके शिखर के अवशेष हैं और साथ में ही अंतराल और फिर एक मंडप है। तो वो पूरा के पूरा एक बड़ा ही खूबसूरत मंदिर रहा होगा और साथ ही जो दृश्य बनता होगा ना वो तो देखने लायक होता होगा, क्योंकि आज भी अगर आप जाएं ठंडों में या बारिश के दिनों में तो पूरा दूर दूर तक हरा भरा जंगल दिखाई देता है और उसके पास में ये तालाब पानी से भरा हुआ नीला नीला और उसके पास में ये किस्बन महल, तो कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई देता होगा। और उस जंगल में जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, खूब चिड़ियों की कलरव की आवाजें आती हैं। मुझे बस एक कमी लगती है, मोर और होने चाहिए थे, बाकी तो वो
1: हो सकता है पूजा जी उस समय रहे हों।
0: जी हाँ, उस समय जरूर रहे होंगे,
1: क्योंकि इतना सुरम्य वातावरण जब आप वर्णन कर रही हैं तो वहाँ मोर फिर कैसे नहीं आएंगे, कैसे नहीं नाचेंगे, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता थी, वहाँ पर जंगली जीव थे, वहाँ पर घना जंगल था, तो निश्चित रूप से वहाँ मोर भी हो सकते हैं। जबकि हम हाथियों की कल्पना तो नहीं कर सकते और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हाथी हुआ करते थे।
0: जी हाँ।
1: वाह, क्या बात है। तो पूजा जी, अब तो ये जो देवगढ़ का किला है ये तो अब हम इस इतिहास की धरोहर मानते हैं, इतिहास की थाती मानते हैं, लेकिन गोंडों का शासन इस किले पर कब तक रहा?
0: सन 1735 में देवगढ़ का राजा था चांद सुल्तान।
1: अच्छा।
0: और 1735 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके जो दोनों बेटे थे वो अल्पायु थे, इसलिए वो राज्यकाज तो संभाल नहीं सकते थे। तो इस मौके का फायदा उठाकर एक स्थानीय सेनापति था वली शाह, उसने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। तो जो चांद सुल्तान की रानी थी रतन कुंवर, उन्होंने देवगढ़ की रक्षा के लिए नागपुर के रघुजी भोसले को संपर्क किया। आप जानते ही ये काल तो मराठा काल के नाम से भी जाना जाता है और संपूर्ण भारत में मराठाओं ने इस समय विजय पताका फहरा दी थी। तो रघुजी ने रतन कुंवर के आमंत्रण पर एक युद्ध किया और वली शाह को मार डाला। उसके बाद रघुजी भोसले रानी कुंवर रतन और उनके जो दोनों बेटे थे उनको नागपुर ले गए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अब यहाँ से संचालन करना रतन कुंवर के बस का नहीं था, लगातार शत्रु आग गड़ाए हुए थे देवगढ़ पर। और जब रघुजी उनको नागपुर ले गए तो उन्होंने उनको वहाँ बहुत सम्मान के साथ रखा और उन्हें वो माँ कहा करते थे।
1: अच्छा।
0: जी हाँ। तो 1738 में रानी रतन कुंवर और रघुजी के बीच में एक संधि भी हुई और इस संधि के तहत रानी तो उन्हें अपना पुत्र मानती ही थी
1: जी।
0: तो उन्होंने उन्हें अपना पुत्र कहा और जो देवगढ़ राज्य का तीसरा हिस्सा था, अपने दोनों पुत्रों को एक एक हिस्सा दिया और एक तीसरा हिस्सा उन्होंने रघुजी को दिया। तो रघुजी ने उनको उतने ही सम्मान के साथ हमेशा नागपुर में रखा और इस बीच में ही जो रतन कुंवर के दोनों बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई, वो युद्ध में मारे गए। तो फिर देवगढ़ राज्य मराठा राज्य में विलय हो गया और उसका संचालन फिर नागपुर से होने लगा।
1: तो चलिए, देवगढ़ के किले की हमने बात की, गोंड राज्य की हम बात कर रहे हैं, इतिहास के पन्नों से हमारा जो कार्यक्रम है चौदहवीं कड़ी में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर देवगढ़ के किले की कहानी समाप्त होती है। तो अगली बार पूजा जी आप हमें किस किले के बारे में बताने वाली हैं, किस राज्य के बारे में बताएंगी?
0: गोंड राज्य की श्रृंखला में अगली बार हम जानेंगे खेरला का गोंड राज्य।
1: तो चलिए, उत्सुकता तो बहुत हो रही है कि अभी से जान ले, क्योंकि बहुत सारी अनूठी जानकारियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन समय की कमी है। तो आज हम पूजा जी को यहीं धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी इस जानकारी के लिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब आपसे विदा लेता हूं, मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को, ध्वनि संपादन और ध्वनि अंकन किया अमित कुंदानी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को, नमस्कार। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
1: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
2: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
3: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी, तो वहाँ बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट पीएससी के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पर डिपेंडेंट थे या ब्रेल पर डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि आप चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
2: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
3: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वो भी आपको कमांड दे के आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115, तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सबसेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
2: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
3: जी, उनका जो
2: हर क्षेत्र में,
3: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है, बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुँच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हील चेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता। सर, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो अपने हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुँचाएंगे, जहाँ तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जा के कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके। तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के सेकंड थर्सडे जो होता है उस पर विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ऑक्सीजंस होते हैं इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंच पाए कि नंबर एक कि दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं, तुम बिना आके भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने।

0: की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा जी, मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना, उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है, एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैम्प, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है, क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके, नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है, या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम में उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो, उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता
0: जी,
1: या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता, तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करे। वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाए कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाए।
0: सर, आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर, आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी, थैंक यू।
2: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेक गुरु। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है बाबा आमटे पर।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह है रेडियो आजाद हिंद। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम भारत विभूति के इस अंक में एक ऐसे महापुरुष की जीवन यात्रा के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सुखद और समृद्ध जीवन त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की सेवा को अपना धर्म चुना। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिखाया कि मनुष्यता की सच्ची सेवा में ही जीवन का वास्तविक अर्थ छिपा है। हम आज भारत विभूति में बात करने जा रहे हैं पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, यानी बाबा आमटे की। आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं स्वाति और मेरे साथ है मेरे सहयोगी
3: दीपेश।
2: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, बात करते हैं पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों को केवल दवाई नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया अर्थ दिया, जिन्होंने समाज की सोच बदली और घृणा को करुणा में बदल दिया।
3: जिनके लिए हर मनुष्य, चाहे वह कितना भी रोगग्रस्त या विकलांग हो, सम्मान का पात्र था, जिन्होंने यह साबित किया कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प पूरे समाज को बदल सकता है, जिनका जीवन प्रेम, करुणा और सेवा की एक अमर कहानी है। आज हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे, यानी बाबा आमटे की जीवन यात्रा के बारे में। तो आइए उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों को जानें और उनसे प्रेरणा लें। तो आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा।
2: श्रोताओं, भारतीय समाज सेवा के इतिहास में बाबा आमटे का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने सुखद और समृद्ध जीवन को त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित और तिरस्कृत वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया। कुष्ठ रोगियों, आदिवासियों और विकलांग लोगों के लिए उनका कार्य न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत बना। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और करुणा से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
3: मुरलीधर देवीदास आमटे जी का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। वे एक अत्यंत संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता देवीदास आमटे ब्रिटिश सरकार के अधीन एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। परिवार हिंगनघाट के सबसे प्रभावशाली और धनी परिवारों में से एक था। बचपन में मुरलीधर को जीवन की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उनका पालन पोषण एक राजसी वातावरण में हुआ था।
2: मुरलीधर के घर में नौकर चाकर थे, अच्छे वाहन थे और हर तरह की विलासिता की चीजें उपलब्ध थी। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। परिवार में शिक्षा और संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाता था। घर में धार्मिक वातावरण था, लेकिन साथ ही आधुनिक विचारधारा को भी स्थान मिला था।
3: बालक मुरलीधर अत्यंत प्रतिभाशाली और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्हें बचपन से ही साहसिक कार्यों में रुचि थी। वे घुड़सवारी करते थे, शिकार किया करते थे और अन्य खेलों में भी निपुण थे। उन्हें तैराकी और कुश्ती में भी रुचि थी। उनका बचपन विलासिता और आराम से बीता, जहां उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। परिवार में उन्हें प्यार से बाबा के नाम से पुकारा जाता था, जो बाद में उनकी पहचान और उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गया।
2: बचपन में बाबा आमटे को सांपों में विशेष रुचि थी। ये रुचि केवल एक शौक भर नहीं था बल्कि एक जुनून था। वो सांपों को पकड़ने और उनके बारे में जानने में घंटों बिता दिया करते। वे जंगलों में जाकर विभिन्न तरह के सांपों को पकड़ते और उनका अध्ययन करते। इस अनोखे शौक ने उन्हें निडर और अत्यंत साहसी बनाया। जो डर दूसरे बच्चों में होता था वो बालक मुरलीधर में नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी और उनके हर शौक को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कभी अपने बेटे को रोका टोका नहीं, बल्कि उसके साहस की हमेशा प्रशंसा ही की। बचपन के इन अनुभवों ने बाबा आमटे के व्यक्तित्व को गढ़ा। सांपों के साथ काम करने से उन्हें ये सीख मिली कि जिन चीजों से लोग डरते हैं वो वास्तव में उतनी भयानक नहीं होती। ये सीख बाद में उनके जीवन में बहुत काम आई जब उन्होंने कुष्ठ रोगियों के साथ काम करना शुरू किया।
3: मुरलीधर आमटे की प्रारंभिक शिक्षा हिंगन घाट के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे और हर कक्षा में प्रथम आते थे। शिक्षकों को उनसे बहुत उम्मीदें थी। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी और वे किसी भी विषय को शीघ्रता से समझ लेते थे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के प्रतिष्ठित मॉरिस कॉलेज में दाखिला लिया। नागपुर उस समय मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था और वहां शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं थी। कॉलेज में भी वे एक मेधावी छात्र के रूप में जाने गए। वे न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। उन्होंने कॉलेज में नाटकों में भाग लिया, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और साहित्यिक गतिविधियों में भी रुचि दिखाई।
2: कॉलेज के दिनों में युवा मुरलीधर एक शानदार जीवन शैली जी रहे थे। उनके पास अच्छे कपड़े थे, महंगे शौक थे और वो अपने मित्रों के बीच लोकप्रिय भी थे। वे अक्सर पार्टियों में जाते, सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते। उनके पास एक कार भी थी जो उस समय बहुत ही बड़ी बात थी। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने कला स्नातक की डिग्री अच्छे अंकों से प्राप्त की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। वकालत उस समय बहुत ही प्रतिष्ठित पेशा हुआ करता था। परिवार भी चाहता था कि मुरलीधर एक सफल वकील बने। उन्होंने कानून की पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1942 में वकालत की डिग्री हासिल की। उसी साल उन्होंने वर्धा में अपनी वकालत की प्रैक्टिस भी शुरू की।
3: बाबा आमटे की प्रतिभा, वक्तव्य कला और कानूनी ज्ञान के कारण वे शीघ्र ही एक सफल और लोकप्रिय वकील बन गए। उनकी आय बहुत अच्छी थी और वे आरामदायक जीवन जी रहे थे। उनके मुवक्किलों में धनी और प्रभावशाली लोग होते थे। वे अदालत में अपनी दलीलों के लिए जाने जाते थे। लेकिन युवावस्था में ही बाबा आमटे के मन में देश और समाज के प्रति चिंता जागने लगी थी। वे उस समय चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से अत्यधिक प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का दर्शन और उनकी विचारधारा ने युवा मुरलीधर के मन पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी का सत्य, अहिंसा और सेवा का संदेश उन्हें बहुत पसंद आया।
2: गांधी जी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में रह रहे थे जो बाबा आमटे के घर से ज्यादा दूर नहीं था। बाबा आमटे ने कई बार सेवाग्राम जाकर गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी के सरल जीवन और उच्च विचारों ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया। गांधी जी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा। बाबा आमटे ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया। उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कानूनी मदद भी की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय हिस्सेदारी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने कई माह बिताए। जेल में रहते हुए उनकी मुलाकात विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। इन महान व्यक्तियों के विचारों और जीवन शैली ने युवा मुरलीधर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा।
3: जेल से बाहर आने के बाद भी बाबा आमटे की वकालत चलती रही, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। वे महसूस करते थे कि केवल धन कमाना और आरामदायक जीवन जीना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान देना है। इसी बीच 1946 में बाबा आमटे का विवाह साधना ताई मोघे से हुआ। साधना ताई एक असाधारण महिला थी। वे भी एक संपन्न परिवार से थी और उन्होंने आगरा के प्रतिष्ठित सेंट जॉन्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उस समय महिलाओं का इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक असाधारण बात थी। साधना ताई प्रगतिशील विचारों वाली और समाज सेवा में रुचि रखने वाली महिला थी।
2: विवाह के बाद साधना ताई ने अपने पति के हर निर्णय में उनका साथ दिया। वो न केवल एक पत्नी थी बल्कि बाबा आमटे की सबसे बड़ी सहयोगी और मित्र भी बनी। उनका विवाह एक आदर्श साझेदारी का उदाहरण था। साधना ताई ने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने पति के मिशन के लिए समर्पित कर दिया। विवाह के समय बाबा आमटे का जीवन बहुत आरामदायक था। वो एक सफल वकील थे, उनकी अच्छी कमाई थी, उनके पास एक बड़ा मकान था, कार थी और सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा करते। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा आमटे के मन में एक अजीबोगरीब सी बेचैनी थी। वो महसूस करते कि जीवन में कुछ कमी है, कोई बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।
3: 1945 की एक रात की घटना ने बाबा आमटे के जीवन की दिशा ही बदल दी। वर्धा की एक सुनसान सड़क पर रात के समय वे गाड़ी चला रहे थे। अचानक उनकी कार की रोशनी में एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। एक मनुष्य सड़क के किनारे असहाय पड़ा था। पास जाने पर पता चला कि वह एक कुष्ठ रोगी था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, उसकी उंगलियां गल चुकी थी, पूरा शरीर सड़ रहा था और असहनीय दुर्गंध आ रही थी। उस अंधेरी रात में आवारा कुत्ते उसके घाव को चाट रखे थे और वह असहाय व्यक्ति चिल्लाने की शक्ति भी खो चुका था। यह दृश्य देखकर बाबा आमटे के रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो उन्हें घृणा और भय हुआ, उनका मन हुआ कि वहां से भाग जाए। लेकिन फिर उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं इतना कायर हूं कि एक मरते हुए मनुष्य की मदद नहीं कर सकता? क्या मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान, मेरा साहस सब बेकार है?
2: वो कार से उतरे और उस व्यक्ति के पास गए। पहली बार उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को इतने करीब से देखा था। वो दृश्य इतना भयावह था, लेकिन बाबा आमटे ने अपने डर पर विजय पाई। उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया, अपनी कार में बिठाया और उसे नजदीकी अस्पताल तक ले गए। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उस कुष्ठ रोगी को भर्ती करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोगियों के लिए अलग अस्पताल होते हैं। कोई भी उस व्यक्ति को छूना नहीं चाहता था, सभी उससे दूर भागते थे जैसे वो कोई जानवर हो, इंसान नहीं।
3: वो रात बाबा आमटे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात साबित हुई। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में कुष्ठ रोगियों के प्रति कितनी क्रूरता और घृणा है। ये लोग न केवल एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, बल्कि समाज द्वारा पूरी तरह से त्याग दिए गए हैं। उन्हें न इलाज मिलता है, न सम्मान, न प्यार, वे जीते जी मर चुके हैं। उस रात घर लौटकर बाबा आमटे को नींद नहीं आई। वे सारी रात सोचते रहे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना जीवन इन उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों की सेवा में लगाएंगे। उन्होंने साधना ताई से अपने विचार साझा किए। साधना ताई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पति के इस निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहेंगी।
2: 1946 से 1949 के बीच बाबा आमटे ने कुष्ठ सेवा की शुरुआत की। उन्होंने अपने निर्णय के बाद सबसे पहले कुष्ठ रोग के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि बिना पूरी जानकारी के वो इन रोगियों की सही सेवा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता, के प्रसिद्ध स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में जाकर कुष्ठ रोग का विधिवत अध्ययन किया। कलकत्ता में रहते हुए बाबा आमटे ने कई महीने कुष्ठ रोग के बारे में सीखा। उन्होंने जाना कि कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। ये रोग संक्रामक तो है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग समझते हैं। लंबे समय तक और निकट संपर्क से ही यह फैलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये रोग पूरी तरह से इलाज योग्य है। सही दवाइयों और देखभाल से कुष्ठ रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं।
3: बाबा आमटे ने यह भी सीखा कि कुष्ठ रोग में त्वचा और नसें प्रभावित होती हैं। इसके कारण रोगी को अपने हाथ पैरों में संवेदना महसूस नहीं होती। छोटे छोटे घाव और चोटे, जिन्हें रोगी महसूस नहीं कर पाता, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और गंभीर रूप ले लेती है। उंगलियां और अंग सड़ने लगते हैं, लेकिन सही समय पर इलाज से इसे रोका जा सकता है। वापस वर्धा लौटने के बाद बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों की सेवा का काम शुरू कर दिया, लेकिन यह आसान नहीं था। पहला सवाल यह था कि रोगियों को कहां से लाया जाए। कुष्ठ रोगी जो समाज से छिपते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। बाबा आमटे ने शहर के बाहरी इलाकों में जाना शुरू किया। वे उन जगहों पर जाते थे जहां कुष्ठ रोगी छिपकर रहते थे। उन्हें विश्वास दिलाते थे कि वे उनका इलाज करेंगे और उनकी मदद करेंगे। धीरे धीरे कुछ रोगी उनके पास आने लगे।
2: बाबा आमटे ने अपने घर में ही एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। वो अपने हाथों से रोगियों के घावों को साफ किया करते, पट्टियां बदलते और उन्हें दवाइयां देते। प्रारंभ में उन्हें बहुत घृणा और भय होता था। घावों की दुर्गंध से उनका मन मिचलाता था। सड़े हुए मांस को छूते समय उनके हाथ पैर कांप जाते। रात को सोते समय वो सपनों में वही दृश्य देखते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने इस भय को और घृणा को खुद से जीत लिया। एक दिन बाबा आमटे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने एक कुष्ठ रोगी तुलसीराम को अपने घर में रहने के लिए बुलाया। तुलसीराम की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसकी उंगलियां गल चुकी थी और पूरे शरीर में घाव थे। बाबा आमटे ने उसे अपने घर में रखा और उसकी नियमित सेवा की। वो रोज उसके घावों को साफ किया करते, दवाई लगाते और उसे खाना भी अपने हाथों से खिलाते।
3: साधना ताई ने भी इस काम में पूरा सहयोग दिया। उन्होंने तुलसीराम के लिए खाना बनाया, उसके कपड़े धोए और उसकी देखभाल की। एक संपन्न घर की पढ़ी लिखी महिला का इस तरह एक कुष्ठ रोगी की सेवा करना उस समय अकल्पनीय था। धीरे धीरे तुलसीराम की हालत में सुधार आने लगा, उसके घाव भरने लगे, रोग का प्रसार रुक गया। कुछ महीनों में वह काफी स्वस्थ हो गया। यह बाबा आमटे के लिए एक बड़ी सफलता थी। इस घटना ने उन्हें विश्वास दिलाया कि कुष्ठ रोगियों की सेवा संभव है और वे भी सामान्य जीवन जी सकते हैं।
2: लेकिन समाज में इस कार्य का भारी विरोध हुआ। पड़ोसी बाबा आमटे से नाराज हो गए। उन्हें डर था कि कुष्ठ रोग उन तक भी फैल जाएगा। लोग बाबा आमटे और उनके परिवार से दूर रहने लगे। रिश्तेदारों ने उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें पागल तक करार दे दिया। ये कहा गया कि एक सफल वकील अपना करियर और जीवन बर्बाद कर रहा है। उनकी वकालत पर भी इसका असर पड़ा। कुछ मुवक्किलों ने उनसे संबंध तोड़ लिया। लोग कहने लगे कि जो व्यक्ति कुष्ठ रोगियों को छूता है उसके पास कैसे जाया जाए। बाबा आमटे की आय में अब कमी आने लगी थी।
3: लेकिन बाबा आमटे और साधना ताई ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना काम जारी रखा। धीरे धीरे और रोगी उनके पास आने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि केवल घर में छोटे से क्लिनिक से काम नहीं चलेगा। कुछ रोगियों के लिए एक बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है, जहां वे रह सकें, इलाज करा सकें और सम्मान से जी सकें। फिर स्थापना हुई आनंद वन की। 1949 से 1960 के बीच बाबा आमटे ने अपने सपने को साकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने वर्धा जिले के वरूरा तहसील के पास चंद्रपुर में 264 एकड़ जमीन खरीदी और वहां आनंद वन यानी आनंद का वन इसकी स्थापना की। यह नाम भी बहुत सोच समझकर चुना गया था। आनंद वन, जहां दुख और पीड़ा से भरे जीवन को आनंद मिले।
2: ये जमीन खरीदने के लिए बाबा आमटे ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। उन्होंने अपना मकान, कार और सभी कीमती सामान बेच दिए। उन्होंने अपनी सफल वकालत को पूरी तरह से छोड़ दिया और एक संपन्न जीवन से वे सब कुछ त्याग कर एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ चले। प्रारंभ में जो जमीन खरीदी गई थी वो पूरी तरह से बंजर थी। वहाँ कुछ भी नहीं था, न पेड़, न पानी, न कोई इमारत, केवल सूखी बंजर जमीन जिस पर कांटेदार झाड़ियां उगी थी। कोई भी इस जमीन पर खेती करने का साहस नहीं करता था, लेकिन बाबा आमटे ने इसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया।
3: साधना ताई और उनके दो छोटे बेटे प्रकाश और विकास, ये भी उनके साथ आनंद वन आ गए। साधना ताई ने अपने आरामदायक घर, सभी सुविधाओं और समाज की प्रतिष्ठा को छोड़कर इस बंजर जमीन पर रहने का निर्णय लिया। बच्चे भी छोटी उम्र से ही इस कठिन जीवन में शामिल हो गए। शुरुआत में परिस्थितियां बहुत कठिन थी, कोई घर नहीं था, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। पानी की बहुत समस्या थी, खाने पीने की भी दिक्कतें थी, रात को जंगली जानवर आते थे और डर पैदा करते थे, मच्छरों और अन्य कीड़ों का भी प्रकोप था।
2: बाबा अमते ने पहले कुछ कुष्ठ रोगियों को आनंद वन में बुलाया। शुरू में केवल 6 रोगी ही आए। इन रोगियों की स्थिति बहुत ही खराब थी, कुछ तो चल भी नहीं पाते थे, कुछ की आंखें खराब हो चुकी थी, लेकिन बाबा अमते का दृष्टिकोण कुछ अलग था। वो इन रोगियों को केवल मरीज के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें सक्षम व्यक्ति ही मानते थे। आनंद वन में बाबा अमते का दर्शन बहुत स्पष्ट था, कार्य ही पूजा है और भिक्षा नहीं, कार्य चाहिए। उन्होंने कुष्ठ रोगियों को बिस्तर पर लेटे रहने के बजाय काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भीख नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें काम का अवसर देना चाहता हूँ। तुम भी काम कर सकते हो, तुम्हारे हाथ पैर भले ही कमजोर हों, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है।
3: यह विचार क्रांतिकारी था। उस समय लोग कुष्ठ रोगियों को केवल दान और भीख का पात्र समझते थे, लेकिन बाबा अमते ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। सबसे पहला काम था जमीन को उपजाऊ बनाना। बाबा अमते ने स्वयं कुदाल उठाई और खेत जोतना शुरू कर दिया। वे सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे। साधनाताई भी उनके साथ काम करती थी। कुष्ठ रोगियों को भी काम में लगाया गया। जो चल सकते थे वो खेतों में काम करते थे, जो हाथों से काम नहीं कर सकते थे उन्हें दूसरे काम दिए गए।
2: धीरे धीरे बंजर जमीन हरी भरी होने लगी, पेड़ लगाए गए, कुआं खोदा गया, छोटे छोटे घर बनाए गए, खेतों में सब्जियां उगाई गईं, पशुपालन शुरू हुआ। हर रोगी को उसकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाता और उसके लिए मजदूरी भी मिलती। बाबा अमते ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने आनंद वन में एक स्कूल खोला। यहाँ कुष्ठ रोगियों के बच्चे पढ़ते थे और साथ ही आसपास के गांवों के बच्चे भी। यह समाज में एक बड़ा बदलाव था। पहली बार कुष्ठ रोगियों के बच्चे सामान्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे।
3: आनंद वन में अस्पताल की सुविधा भी विकसित की गई। यहाँ कुष्ठ रोग के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी इलाज होता था। कई रोगी जो पूरी तरह निराश हो चुके थे यहाँ आकर नया जीवन पाने लगे। उनके घाव भरने लगे, रोग का प्रसार रुक गया और वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। आनंद वन में विभिन्न कार्यशालाएं भी स्थापित की गई। यहाँ बुनाई, चमड़े का काम, कृषि उपकरण बनाना और अन्य कई तरह के काम होते थे। कुष्ठ रोगी इन कामों में लगे थे और अपनी रोजी रोटी कमा रखे थे। यह उनके लिए आत्मसम्मान की बात थी। वे अब भिखारी नहीं रहे बल्कि कमाने वाले व्यक्ति बन गए थे। धीरे धीरे आनंद वन की ख्याति फैलने लगी। देश के विभिन्न हिस्सों से कुष्ठ रोगी यहां आने लगे। 1950 के दशक के अंत तक आनंद वन में सैकड़ों रोगी रह रहे थे। यह एक समृद्ध और आत्मनिर्भर समुदाय बन गया था।
2: बाबा अमते ने अपने कार्य को केवल कुष्ठ रोगियों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने विकलांग लोगों, अंधों और अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए भी काम किया। आनंद वन में नेत्रहीनों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की गईं। 1973 में उन्होंने गढ़चिरौली जिले के हेमलक्सा में एक नई परियोजना की शुरुआत की।
3: उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया। बाबा अमते ने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे बड़े बांधों के निर्माण से होने वाले विस्थापन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि विकास के नाम पर गरीब लोगों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
2: बाबा अमते को कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। बाबा अमते के अथक सेवा कार्यों के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1986 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक से उन्हें सम्मानित किया गया।
3: 1985 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। जिसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार सामुदायिक नेतृत्व की श्रेणी में दिया गया। इस पुरस्कार की राशि उन्होंने आनंद वन के विकास में लगा दी। 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें टेम्पलटन पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार और अन्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। इन सभी पुरस्कारों के बावजूद बाबा आमटे अत्यंत विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। उन्होंने कभी भी इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं माना, बल्कि उन लोगों के प्रति समाज की जिम्मेदारी का प्रतीक माना जिनकी वे सेवा कर रहे थे।
2: जीवन के अपने अंतिम वर्षों में बाबा आमटे गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य बीमारियों ने जकड़ लिया। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या थी और वो बिस्तर पर ही रहने लगे। चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन बीमारी ने भी उनके जज्बे को कमजोर नहीं होने दिया। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी आनंद वन और हेमलक्सा के कार्यों का संचालन किया करते। वे अपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते रहे।
3: साधना ताई ने अंत तक अपने पति की सेवा की। उनके दोनों बेटे प्रकाश और विकास ने भी अपने माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाया। प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी डॉक्टर मंदाकिनी आमटे ने हेमलक्सा में आदिवासियों की सेवा को जारी रखा। विकास आमटे ने आनंद वन का संचालन संभाला। 9 फरवरी 2008 को आनंद वन में बाबा आमटे ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका निधन पूरे देश के लिए बड़ी क्षति था। भारत ने अपना एक महान समाज सेवक खो दिया।
2: उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों ने भाग लिया। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन सबसे अधिक दुख उन हजारों लोगों को था जिनके जीवन में बाबा आमटे ने उजाला भरा था। बाबा आमटे का जीवन दर्शन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। उनके कुछ प्रमुख विचार और सिद्धांत इस तरह थे।
3: मैं एक मनुष्य की जान बचाना नहीं चाहता, मैं एक मनुष्य को जीवन देना चाहता हूँ।
2: ये उनका मूल मंत्र था। वो केवल रोगियों का इलाज नहीं करते थे, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर देते थे।
3: कर्म ही पूजा है, उनका मानना था कि मनुष्य को काम करना चाहिए। काम से ही मनुष्य को आत्मसम्मान और जीवन का उद्देश्य मिलता है। भिक्षा नहीं, कार्य चाहिए। विदान और भिक्षा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि मनुष्य को भीख नहीं बल्कि काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। समानता और सामाजिक न्याय, बाबा आमटे ने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को नकारा। आनंद वन में सभी को समान अवसर और सम्मान मिलता था।
2: बाबा आमटे पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण में विश्वास रखते थे। हेमलक्सा में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण पर खासा ध्यान दिया। बाबा आमटे की मृत्यु के बाद भी उनका काम जारी है। आनंद वन और हेमलक्सा आज भी सक्रिय है और हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रकाश आमटे और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे ने हेमलक्सा में अपने माता पिता के काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हें भी अपने सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी सम्मिलित है।
3: बाबा आमटे के जीवन पर कई किताबें लिखी गई, उन पर वृत्त चित्र बनाए गए। उनकी जीवनी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। आनंद वन आज भी कुष्ठ पुनर्वास का एक आदर्श मॉडल है, जहां विकलांगों के लिए विशेष उपकरण बनाए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं हैं। यहां के निवासी आत्मनिर्भर और गौरवपूर्ण जीवन जी रहे हैं। बाबा आमटे का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने अपने सुखद जीवन को त्याग कर समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की सेवा की। उन्होंने साबित किया कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और समर्पण समाज में महान परिवर्तन ला सकता है।
2: बाबा आमटे न केवल कुष्ठ रोगियों का इलाज करते थे, बल्कि उन्हें जीवन जीने का एक नया अर्थ भी देते। उन्होंने समाज की सोच बदली, कुष्ठ रोगियों के प्रति घृणा और भय को भी समाप्त किया। उन्होंने बताया कि ये लोग भी समाज के उपयोगी सदस्य हो सकते हैं। उनका जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है। आज भी समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो उपेक्षित और तिरस्कृत हैं। बाबा आमटे का जीवन हमें सिखाता है कि हमें इन वर्गों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देना चाहिए।
3: बाबा आमटे जी ने कहा था, मैं केवल एक मोमबत्ती जला रहा हूं, यदि हर कोई अपनी एक मोमबत्ती जलाए तो पूरा संसार रोशन हो सकता है। यही उनका संदेश था और यही उनकी विरासत है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाना।
2: तो श्रोताओं, इसी प्रेरक संदेश के साथ हमारा ये कार्यक्रम भारत विभूति अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हम बात कर रहे थे पद्म भूषण डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, यानी बाबा आमटे की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौर, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पातम का, वाचन कर रहे थे मैं यानी स्वाति
3: और मैं दीपेश,
2: लेखन था अखिलेश कुमार वर्मा का। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं, तप की शांति से दमकती हैं। श्रोताओं, बीते एपिसोड में हमने रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7 के साथ उस गहन भाव भूमि को महसूस किया जहां शब्द केवल कथा नहीं कहते, वे भीतर उतरकर आत्मा को स्पर्श करते हैं। वहां कर्ण के स्वर में केवल प्रतिरोध नहीं था, बल्कि व्यवस्था से टकराता हुआ एक सच था। जहां ज्ञान उपेक्षित था और जन्म की दीवारें पुरुषार्थ के मार्ग में खड़ी थी, फिर हमने उस मौन साधना को देखा जहां गुरु के स्नेह और शिष्य के समर्पण के बीच कर्ण स्वयं को तपाता है, और अंततः वो क्षण भी जब पीड़ा उसकी जांघ में धसती जाती है पर उसका संकल्प तनिक भी नहीं डिगता। ये वही बिंदु है जहां कर्ण की महानता दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है उसकी निस्तब्धता में, उसके धैर्य में और उसके भीतर जलते हुए उस अग्निकुंड में जो उसे साधारण से असाधारण बनाता है।
1: हाँ श्रोताओं, यह यात्रा अब और भी भीतर उतरती जा रही है, जहां प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में मिलते हैं। कर्ण का जीवन अब केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह गया, वह एक ऐसी साधना बन चुका है जिसमें हर क्षण उसे खुद से ही जूझना है। यहाँ पीड़ा भी शिक्षक है और मौन भी मार्गदर्शक। उस विषदंश की वेदना केवल शरीर तक सीमित नहीं, वह उस व्यवस्था की चुभन है जो मनुष्य को बार बार उसकी सीमा का बोध कराती है। अब कथा उस दहलीज पर खड़ी है जहाँ भावनाएं और भी तीव्र होंगी, निर्णय और भी कठोर होंगे और कर्ण का पथ नई चुनौतियों से भर उठेगा। यह वह चरण है जहां भीतर सुलगती हुई अग्नि अब धीरे धीरे प्रकाश बनने को है, पर उस प्रकाश तक पहुंचने से पहले उसे और अंधेरों से गुजरना होगा। आइए श्रोताओं, अब इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं उस अगले विस्तार की ओर, जहां कर्ण की कथा और गहरी होती है, उसके संकल्प की धार और पैनी हो जाती है और जीवन उसे ऐसे मोड़ों से परिचित कराता है जिनसे गुजरकर ही कोई व्यक्तित्व अमिट बन पाता है। अब सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 को। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की, भक्तिपूर्ण वह वल छाती। सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले,
2: शिव शिव, तूने यह की मूर्खता पड़ी, सहता रहा चल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी।
1: तनिक लजाकर कहा कर्ण ने,
3: नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज, क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा, आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच, ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया।
1: परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में, दांत पीसकर आंखें तरेर कर बोले,
2: कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू?
1: यहीं से कथा निर्णायक मोड़ लेती है, गुरु के मन में शंका जन्म लेती है। भक्ति और विश्वास के बीच अब सत्य का प्रश्न खड़ा हो गया है। यही वह क्षण है जहां करुणा से कथा क्रोध और नीति की दिशा में मुड़ती है। श्रोताओं, यह काव्य संवाद सुनकर मन सचमुच भर आता है। यह केवल एक कीट दंश की कथा नहीं, यह विश्वास की अग्नि परीक्षा है जहां शिष्य अपनी पीड़ा से अधिक गुरु की नींद की रक्षा करता है। ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा, ऐसा मौन त्याग आज कहां देखने को मिलता है? तप, संयम और समर्पण, ये शब्द जैसे हमारे जीवन से सरक कर केवल ग्रंथों और कथाओं में सिमटते जा रहे हैं। कर्ण ने जिस वेदना को सहा वह केवल शरीर की पीड़ा नहीं थी, वह भाग्य की विडंबना भी थी जो कभी जन्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर उसके मार्ग में दीवारें खड़ी करती रहीं। लगता है समय भी जैसे उसी के धैर्य की परीक्षा लेने पर तुला हो। और यही इस प्रसंग को साधारण कथा से उठाकर अमर कर देता है। सांच को आँच नहीं, पर आँच पहले उसी पर आती है। कर्ण की देह तो अब तक पत्थर बनी रही, पर अब बारी है उसकी असली पहचान की, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जन्म और कर्म आमने सामने खड़े हैं। गुरु का रोष अग्नि सा धधक रहा है और शिष्य का हृदय हथेली पर रखा है। आइए सुनते हैं द्वितीय सर्ग का भाग 9, जहां सत्य की धार किसी खड्ग से कम तीखी नहीं है।
2: सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी ना जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा।
1: क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कापने लगे भय से थर थर।
3: सूत पुत्र, मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्त वीर्य के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का, पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। पता सका मैं नहीं इसी से, हे प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी, पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ, अपने आप मरा सा जाता हूँ।
1: श्रोताओं, यह दृश्य मानो वज्र और कमल का एक साथ टूटना है। कर्ण का सिर गुरु के चरणों में झुका हुआ है, जैसे आंधी में झुकता कोई अशोक वृक्ष टूटता नहीं पर भीतर से चिर जाता है। उसकी वाणी में वह कपकपी है जो केवल भय की नहीं आत्मग्लानी की होती है। ज्ञान पाने की प्यास उसके लिए गंगा थी, पर जन्म की रेत ने बार बार उसका मार्ग रोक लिया। आज वह स्वयं को अपराधी की तरह प्रस्तुत कर रहा है, जबकि उसका दोष केवल इतना ही है कि उसने ऊंचा उड़ने का स्वप्न देखा।
0: श्रोताओं, गुरु की आंखों में दहकती ज्वाला है और शिष्य का मन जैसे राख से ढका अंगार। परशुराम का क्रोध आकाश चीरता धूम केतु सा प्रखर है, तो कर्ण की विनती संध्या की अंतिम लौ कंपित, किंतु अभी भी उजास बचाए हुए शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे बाण हैं और सत्य नंगी धार की तरह चमक रहा है।
1: और इस करुण क्षण को दिनकर की लेखनी ने ऐसे छुआ मानो सूर्य स्वयं अपने ही अंश की पीड़ा लिख रहा हो। एक तपता तेज जिसे संसार ने नाम देने से पहले ही ठुकरा दिया। श्रोताओं, करुणा की इस गहन घटा के बाद अब शब्दों का आकाश फिर खुलने जा रहा है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल जन्म से नहीं, अपने चुनावों और अपने व्रतों से पहचाना जाता है, कि सम्मान छल से नहीं सत्य की अग्नि से तपकर मिलता है, और यह भी कि महत्वाकांक्षा जब मर्यादा से टकराती है तो आत्मा स्वयं अपना न्यायालय बन जाती है।
0: आइए इसी सीख को हृदय में संजोए हम द्वितीय सर्ग के भाग 10 में प्रवेश करें, जहां कर्ण शाप से नहीं अपने अधूरे स्वप्नों से जूझता दिखाई देगा, जहां गुरु और शिष्य के बीच केवल दंड नहीं एक गहरी पहचान का प्रकाश भी फूटेगा। सुनते हैं रश्मि रथी का भाग 10।
3: छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती भली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। ये तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मर कर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें।
1: लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले,
0: हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया, कभी नहीं मैंने पाया।
1: श्रोताओं, यह प्रसंग किसी साधारण स्वीकारोक्ति का नहीं है, आत्मा के दरबार में खड़े एक मनुष्य के नग्न सत्य का है। कर्ण यहां केवल अपने गुरु के सामने नहीं, अपने ही अंतःकरण के कटघरे में खड़ा है, जहां ना कोई आड़ है ना कोई तर्क। छल से पाया मान उसके लिए मान नहीं, मानो अंगार है जो भीतर ही भीतर उसे दग्ध कर रहा है। यह दृश्य मानो तपते मरुस्थल पर अचानक फूट पड़ी जलधारा हो। एक और कर्ण है जो शाप को भी प्रसाद की तरह हथेली पर धरने को तैयार खड़ा है, और दूसरी ओर गुरु हैं, जिनकी कठोर दृष्टि के कोनों से करुणा ओस की बूंद बनकर ढलक रही है। यह क्षण केवल अपराध और दंड का नहीं, हृदयों के पिघलने का है, जहां शिष्य की निष्ठा और गुरु की करुणा मिलकर समय की शिला पर अमिट रेखा खींच देती है।
0: श्रोताओं, उसकी पीड़ा केवल अपने अपराध की नहीं बल्कि अधूरी रह गई आकांक्षाओं की भी है। अर्जुन को परास्त करने की इच्छा, दुर्योधन के प्रति उसका अटूट संबंध और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की जिद, वो दो दिशाओं के बीच खड़ा है। एक ओर धर्म का आह्वान, दूसरी ओर मित्रता का बंधन। कर्ण भली भांति जानता है कि वचन और उपकार दोनों मनुष्य को बांध लेते हैं और वही बंधन उसे अपने निर्णयों में स्वतंत्र नहीं रहने देते। फिर भी वो अपने जीवन की याचना नहीं करता बल्कि दंड को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर है। यही उसकी महानता है कि वो अपने दोष से भागता नहीं, उसे स्वीकार कर उससे ऊपर उठना चाहता है।
1: श्रोताओं, दिनकर जी मूलतः वीर रस के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती हैं। पर देखिए, उसी वीर रस के कवि ने कर्ण की करुणा को भी उतनी ही गहराई से उकेरा है। यही उनकी लेखनी की शक्ति है। वह हमें साहस भी देती है और संवेदना भी सिखाती है। आज की पीढ़ी के लिए यह संदेश स्पष्ट है, संघर्ष से घबराना नहीं, अपने लक्ष्य ऊंचे रखना, पर सत्य और आत्मसम्मान को कभी ना त्यागना। कर्ण ने भले ही असत्य का सहारा लिया हो, पर उसकी साधना और जिज्ञासा इतनी सच्ची थी कि गुरु का मन द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता।
0: तो श्रोताओं, इसी गहन भाव विस्फोट, आत्मस्वीकृति और गुरु शिष्य के इस अद्वितीय प्रसंग के साथ आज की ये काव्य यात्रा यहीं एक मधुर विराम लेती है। कर्ण का अंतर्द्वंद, उसकी पीड़ा, उसका स्वाभिमान और उसका टूट संकल्प, ये सब मिलकर हमें सोचने पर विवश करते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग 11, 12 और 13 का काव्य पाठ और चर्चा, जहां कर्ण की यात्रा एक नए निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। लेकिन जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी संदीप शर्मा ने,
1: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने
4: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
0: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की यात्रा यहीं विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं सालिम अली से। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: दस साल का एक बालक
3: जी
1: आकाश में उड़ती हुई एक गोरैया को देखता है और उसे मार गिराता है। गोरैया जैसे ही जमीन पर गिरती है वो उसे दौड़कर उठा लेता है, पर इस पक्षी को मारकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस पक्षी को वो बहुत ही गौर से देखता है और आश्चर्य में पड़ जाता है। इस गोरैया की गर्दन पर पीले धब्बे हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे। विचारों में डूबा हुआ ये बालक इस पक्षी को लेकर अपने मामा अमरुद्दीन को दिखाता है और उनसे पूछता है कि ये कौन सी जाति की चिड़िया है। मामा भी बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं कर पाते। वे उसे बंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के एक छोटे कमरे में ले जाते हैं और बच्चे का परिचय इस संस्था के सचिव W.S. Millard से कराते हैं।
3: हाँ श्रोताओं, मिलार्ड एक भारतीय बच्चे को पक्षी की इतनी रुचि दिखाने के लिए आश्चर्य पड़ जाते हैं। वे बच्चे को कमरे में सुरक्षित ढंग से रखे हुए अलग अलग तरह के सुरक्षित मुद्रा पक्षियों को दिखाते हैं। इस बच्चे की पक्षियों के विषय में उत्सुकता और जिज्ञासा शांत होने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। पर फिर मिलार्ड एक अलमारी से एक गोरैया निकालते हैं जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बच्चे ने मारी थी। बच्चा आश्चर्यचकित होकर के कहता है, अंकल मिलार्ड, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पक्षी इतने प्रकार के होते हैं। मैं इन सभी के विषय में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मिलार्ड उसकी बात सुनकर के मुस्कुराते हैं। उन्होंने वयस्कों में भी कभी पक्षियों के प्रति इतनी उत्सुकता कभी नहीं देखी थी जितनी उस बालक में थी।
1: इसके बाद ये बालक रोजाना ही संग्रहालय में आने लगा और चिड़ियों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित रखने की विधियां सीखने लगा। जानते हैं श्रोताओं, ये बालक कौन था? ये बालक था सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, जो बाद में सलीम अली के नाम से परिंदों के मसीहा के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए।
3: हाँ श्रोताओं,
1: पक्षी विज्ञान में जन्मजात रुचि रखने वाले और भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली का जन्म 12 नवम्बर 1896 को बंबई के खेतवाड़ी इलाके में एक बड़े परिवार में हुआ था।
3: श्रोताओं, उनके 5 भाई और 4 बहनें थीं। उनकी माता का नाम था जिजात उन निशा। जब वे 1 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। जब वे 3 वर्ष के हुए तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। सलीम अली के मन में पक्षियों के प्रति उत्सुकता और रुचि उनके चाचा अमीरुद्दीन तैयब जी ने उत्पन्न की थी। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा अमीरुद्दीन तथा चाची बेगम हमीदा ने उनका और उनके भाई बहनों का पालन पोषण किया।
1: श्रोता, उस समय पक्षियों में लोगों की रुचि बहुत कम थी। मुंबई के बाजारों में पक्षी खुलेआम बेचे जाते थे। अक्सर 1 रुपए में 8 से 12 पक्षी मिल ही जाते थे। सलीम अली तरह तरह के पक्षी बाजार से खरीद कर उन्हें केन की टोकरियों में रखते थे और थोड़ा बहुत प्रशिक्षित करके उन्हें छोड़ देते थे। अब वे किसी पक्षी को न तो मारते थे और न ही लंबे समय तक बंद रखते थे और न ही हमेशा के लिए उसे पालतू बनाते थे। वे कोई पक्षी ले आते, उसका अध्ययन करते और उसकी विशेषताएं जान लेने के बाद उसे छोड़ देते थे।
3: हाँ श्रोताओं, और 11 वर्ष की आयु में उन्हें एक स्थानीय स्कूल में भर्ती कराया गया। कुछ ही समय बाद उन्हें सेंट जेवियर स्कूल में प्रवेश मिल गया। 14 वर्ष की आयु में खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें अपने भाई और भाभी के साथ हैदराबाद सिंध पाकिस्तान जाकर के रहना पड़ा। वहां भी वे कार्यालय के चपरासी के साथ पक्षियों के घोंसलों की तलाश में रहते और पक्षी और उनके अंडों का वे अध्ययन किया करते थे। कुछ साल बाद वे मुंबई वापस लौट आए।
1: सन 1913 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की। तब तक डॉक्टर सलीम अली ने वन, वन्य पशु पक्षियों और आखेट संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ डाली थीं और रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल कर ली थी। इन अध्ययनों और आत्मविश्लेषण के फलस्वरूप अली जी में वन्य जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। वे पक्षियों को पकड़कर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते थे। इसके बाद उनके जीवन में एक मोड़ आया। बर्मा में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार का उन्हें एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि यदि सलीम अली की रुचि पढ़ाई में नहीं है तो वे वहां आकर नवस्थापित खान उद्योग में कार्य संभाल सकते हैं। सलीम अली की गणित में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसीलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वे बर्मा जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु वहां पर भी व्यापार में उनकी रुचि कभी नहीं थी। वे वहां पर भी जंगलों में जाकर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करते रहते। यहां वे जे सी होयवुड नाम के एक वन अधिकारी से मिले। डॉक्टर अली को बर्मा के पक्षियों के विषय में होयवुड से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने पक्षियों और पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन के विषय में अत्यधिक ज्ञान प्राप्त किया।
3: अब चूंकि उनका रुझान व्यापार की ओर नहीं था, इसलिए उन्हें मुंबई लौटना पड़ा। यहां वे सेंट जेवियर कॉलेज में जीव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष फादर ब्लेटर के संपर्क में आए। उनके प्रोत्साहन से डॉक्टर अली ने पशु विज्ञान विषय लेकर के स्नातक की परीक्षा पास की। दिसंबर 1918 में 22 वर्ष की आयु में डॉक्टर अली ने तहमीना के साथ विवाह किया। तहमीना अंग्रेजी और उर्दू में पारंगत थी और उनके पास इंग्लैंड का वीजा भी था। तहमीना ने अपने पति को पक्षियों के बारे में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको भेज दिया इंग्लैंड।
1: डॉक्टर सलीम अली के घर के आंगन में एक पेड़ था जिस पर बया नाम के पक्षी ने एक घोंसला बनाया था। सारे दिन वे पेड़ के नीचे बैठे रहते और बया पक्षी के कार्यकलापों को एक नोटबुक में लिखते रहते। बया पक्षी के कार्यकलापों और व्यवहार को उन्होंने एक शोध निबंध के रूप में प्रकाशित कराया। ये निबंध पक्षी विज्ञान में उनकी प्रसिद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। श्रोताओं,
3: डॉक्टर अली के पास पक्षी विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी, परंतु विवाह के बाद 5-7 वर्ष के अंदर उन्होंने अत्यधिक जानकारी एकत्र कर ली और पक्षी विज्ञान और जीव विज्ञान तथा पशु विज्ञान का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी बीच उन्हें एक मित्र की एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद फादर ब्लेटर ने उनकी मदद की। उन्होंने डॉक्टर सलीम अली को मुंबई से नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी म्यूजियम में गाइड लेक्चरर के पद पर नौकरी दिलवा दी। यहां कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे पक्षियों के संबंध में पूर्ण विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो उन्हें उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना होगा। और देश के किसी भी संस्थान में पक्षी विज्ञान पर ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं था, इसलिए अब उनका अध्ययन करने के लिए उन्होंने बर्लिन जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने युवा पक्षी वैज्ञानिक बर्नहार्ड के साथ पक्षियों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। बर्लिन में डॉक्टर अली ने निष्ठापूर्वक एकाग्र मन से अध्ययन किया। सन 1930 में बर्लिन से वापस आए और उन्होंने निजाम के हैदराबाद राज्य में कार्य आरंभ किया और इसके लिए उनको कुछ अनुदान भी मिला। उन्होंने पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया और पक्षियों का सर्वेक्षण भी किया। पक्षियों की आदतों के अध्ययन के लिए उनकी प्रशंसा की जाने लगी। यहां उन्हें नीलगिरी के पक्षियों का अध्ययन करने का अवसर मिला।
1: सन 1934 से 1939 के बीच डॉक्टर अली ने देहरादून में पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया। अब उन्हें विश्व सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानियों में मान्यता मिल गई। पक्षियों की जानकारी के विषय में उन्होंने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी जो 1941 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में पक्षियों के विषय में अनेक नई जानकारियां प्रस्तुत की गई थीं। और रोचक बात तो यह है श्रोताओं कि इस पुस्तक की अब तक 60,000 से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं।
3: हाँ श्रोताओं, बात सन 1945 की है। उन्होंने कैलाश मानसरोवर के पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ स्पैरो में उन्होंने इन सब बातों की उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। कच्छ की मरुभूमि के पक्षियों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। इस अध्ययन का वर्णन उन्होंने बर्ड्स ऑफ कच्छ नामक अंग्रेजी ग्रंथ में किया। पक्षियों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल पर यूरोप का भ्रमण किया। उनकी डायरी में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है।
1: सन 1948 में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डिलॉन रिप्ले के साथ एक प्रोजेक्ट आरंभ किया, जिसमें 10 भागों भारत और पाकिस्तानी पक्षियों के विषय में जानकारी लिखनी थी। इस पुस्तक का नाम हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है। इसमें उनके 20 वर्षों के अध्ययनों का निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। इसमें सभी प्रकार के पक्षियों, उनके दिखाई देने और प्रवासी आदतों से संबंधित अनेक बातों की जानकारी दी गई है। अब वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक बन चुके थे। देश विदेश में उनके कार्य की प्रशंसा हुई, उन्हें सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। सन 1953 में उन्हें एशियाटिक सोसाइटी मेडल प्रदान किया गया। सन 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और सन 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1978 में आंध्र विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद डिग्रियों से सम्मानित किया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1958 में पद्म भूषण और सन 1976 में पद्म विभूषण प्रदान कर सम्मानित किया। सन 1981 में बांग्लादेश की एशियाटिक सोसाइटी ने उनके कार्य की प्रशंसा और सराहना के रूप में उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया। इनके अलावा भारत सरकार ने डॉक्टर सलीम अली को सन 1982 में उनके पक्षी विज्ञान में नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। वन्य जीवन की रक्षा के प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा की गई और उन्हें सन 1983 में राष्ट्रीय पुरस्कार यानी स्वर्ण पदक प्रदान किया गया और उसी वर्ष अमेरिका में राष्ट्रीय वन्य जीवन संघ यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन ने उनको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके उनका सम्मान किया।
3: हाँ श्रोताओं, डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों के सर्वेक्षण के लिए 65 वर्ष से भी अधिक समय तक समस्त भारत देश का भ्रमण किया। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 60 वर्ष भारतीय पक्षियों के साथ बिताए। परिंदों के विषय में इनका ज्ञान इतना अधिक था कि लोग उन्हें परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश मानते थे। उन्होंने पक्षियों का अध्ययन नहीं किया बल्कि प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में भी बहुत काम किया। उन्हें 5 लाख रुपए का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जिसे उन्होंने बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को समर्पित कर दिया था।
1: श्रोताओं, 91 साल की उम्र में 20 जून 1987 को डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञानी ने अपनी अंतिम सांस ली और आज ऐसा लगता है कि परिंदों के इस मसीहा के चले जाने से पक्षी जैसे बेसहारा हो गए हैं। देश के इस महान वैज्ञानिक को आने वाली सदियां भी कभी नहीं भूल पाएंगी। श्रोताओं,
3: हाँ श्रोताओं, ऐसे थे हमारे पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था सुहासिनी बैलवंशी ने। स्वर थे प्रमोद शर्मा और कंचन राजानी के। अब हमें आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह हम एक और भारतीय महान वैज्ञानिक की आपके साथ उनके जीवन दर्शन की कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी शक्ति के जीवंत प्रतीक थे। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन में ही 6 वर्ष की आयु में छज्जे से नीचे गिर जाने के कारण उनका सर पत्थर से टकरा गया था, जिसके फलस्वरूप उनके मस्तक में गहरी चोट आई थी तथा काफी रक्त बह गया था। इस दुर्घटना से उनकी दाई आंख के ऊपर एक स्थायी निशान बन गया था। परवर्ती काल में श्री रामकृष्ण देव ने इस घटना को सुनने के बाद कहा था,
1: एक तरह से अच्छा ही हुआ। यदि इस प्रकार उसके सिर से रक्त निकल जाने के कारण उसकी शक्ति का क्षय ना हुआ होता तो वो अपनी अदम्य शक्ति से जगत को उलट पलट कर डालता।
2: इस प्रकार शक्ति के जीवंत विग्रह के रूप में स्वामी जी हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से देखा था कि भारत की हजारों वर्षों की गुलामी के मूल में लोगों की शारीरिक और मानसिक दुर्बलता ही रही थी। इसके फलस्वरूप ईर्ष्या, द्वेष, कायरता और कपटता ने मानो राष्ट्रीय गुणों का रूप धारण कर लिया था। कर्महीनता, पलायनवादिता, अंधविश्वास और कुरीतियों ने धर्म का रूप ले लिया था। इसीलिए स्वामी जी इस सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए लोगों को शक्ति का मूल मंत्र देते हुए कहते हैं,
3: क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्ति छिपी हुई है? क्या कोई वैज्ञानिक भी उन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी भी उसकी असीम शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह नहीं करना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर विद्यमान है।
0: मनुष्यों ने अपने दैवी स्वरूप को भुलाकर स्वयं को अत्यंत क्षुद्र और पौरुष विहीन समझ रखा है। उनकी इस दुर्बलता को दूर करने हेतु स्वामी जी उपनिषदों की अमर वाणी का उद्घोष करते हुए कहते हैं,
3: तुम प्रभु की संतान, शाश्वत आनंद के हिस्सेदार, पवित्र और पूर्ण हो। हे पृथ्वी निवासी, ईश्वर स्वरूप भाइयों, तुम भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। ये कथन मानव स्वरूप पर एक लांछन है। ऐ सिंहों, आओ और अपने भेड़ बकरी होने का भ्रम दूर कर दो। तुम अमर आत्मा, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, शाश्वत और मंगलमय हो। तुम जड़ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं।
2: धर्म के यथार्थ स्वरूप जो उपनिषद में वर्णित हैं, उसे स्वामी जी गिरी कंदराओं में अवस्थित कुछ सन्यासियों के हाथों से निकालकर जनता की संपत्ति बना देना चाहते थे। वे कहते थे,
3: उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वो है अभी निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता।
0: इसी भय से मुक्ति पाने के लिए स्वामी जी आत्मविश्वास की उपलब्धि पर जोर देते थे।
3: विश्वास, विश्वास अपने आप में और ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराणों के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए गए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो।
2: इस आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है शारीरिक बल। शारीरिक दुर्बलता के फलस्वरूप ही हम आत्मविश्वास खो बैठते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने युवकों को शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने का उपदेश देते हुए कहा,
3: सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए, धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो, मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि कांटा कहां चुभता है, मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारी रगों और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा होगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तुम उपनिषद तथा आत्मा की महानता को अच्छी तरह समझ सकोगे।
0: शारीरिक शक्ति के अभाव में ही हमें सब प्रकार के दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं,
3: दुख भोग का एकमात्र कारण है दुर्बलता। हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम दुख भोगते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। जहां हमें दुर्बल कर देने वाली कोई चीज नहीं, वहां न मृत्यु है न दुख। बल ही एकमात्र आवश्यक वस्तु है। बल की भवरोग की एकमात्र दवा है। धनिकों के द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अज्ञजनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी यही एकमात्र दवा है। देह में शक्ति नहीं, हृदय में उत्साह नहीं, मस्तिष्क में प्रतिभा नहीं, क्या होगा रे इन जड़ पिंडों से। मैं हिला डुलाकर इनमें स्पंदन लाना चाहता हूं, इसलिए मैंने प्राणांत प्रण किया है कि वेदांत के अमोघ मंत्र से इन्हें जगाऊंगा। उत्तिष्ठित जागृत इस अभय वाणी को सुनाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है।
0: शारीरिक बल के साथ ही उन्होंने मानसिक बल की आवश्यकता पर भी बड़ा जोर दिया था। मनुष्य के एकांगी विकास के वे पक्षपाती नहीं थे। उनका कहना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए शारीरिक और मानसिक शक्ति के सम्यक विकास के लिए नवयुवकों को उद्बुद्ध करते हुए वे कहते हैं,
3: अब तुम्हें महावीर के जीवन को अपना आदर्श बनाना होगा। देखो वे कैसे श्री रामचंद्र की आज्ञा मात्र से विशाल सागर को लांघ गए। उन्हें जीवन या मृत्यु से कोई नाता नहीं था। वे पूर्ण रूप से इंद्रजीत थे और उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। अब तुम्हें अपना जीवन दास्य शक्ति के उस महान आदर्श पर खड़ा करना होगा। उसके माध्यम से क्रमशः अन्य सारे आदर्श जीवन में प्रकाशित होंगे। गुरु की आज्ञा का सर्वतोभावेन पालन और अटूट ब्रह्मचर्य, बस यही सफलता का रहस्य है। हनुमान एक ओर जैसे सेवा दर्श के प्रतीक हैं, वैसे ही दूसरी ओर सिंह विक्रम के भी प्रतीक हैं। सारा संसार उनके सम्मुख श्रद्धा और भय से सिर झुकाता है।
0: इस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन से शारीरिक और मानसिक शक्ति से युक्त हो वे नवयुवकों को अपना जीवन भारत भारती की सेवा में लगा देने का आह्वान करते हुए ज्वलंत भाषा में कहते हैं,
3: जाओ जाओ तुम सब लोग वहां जाओ जहां प्लेग फैला हो, जहां दुर्भिक्ष काले बादलों की भांति छा गया हो, जहां लोग दुख कष्ट के भार से पीड़ित हों और जाकर उनका दुख हल्का करो। अधिक से अधिक क्या होगा, यही ना कि इस प्रयत्न में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर उससे क्या, तुम्हारे समान कितने ही लोग कीड़ों की भांति प्रतिदिन जन्म ले रहे हैं और मरते जा रहे हैं। इससे इस विशाल दुनिया का भला कौन सा टोटा हो जाता है। तुम्हें मरना तो होगा ही, और फिर एक महान आदर्श लेकर क्यों ना मरो। जीवन में एक आदर्श लेकर मर जाना कहीं बेहतर है। द्वार द्वार इस आदर्श का प्रचार करो, और इससे तुम्हारी अपनी उन्नति तो होगी ही, साथ ही तुम अपने देश का भी कल्याण करोगे। तुम ही पर सारे देश का भविष्य निर्भर है, उसकी भावी आशाएं केंद्रित हैं। तुम्हें अकर्मण्य जीवन बिताते देखकर मुझे मार्मिक पीड़ा होती है। उठो उठो, काम में लग जाओ, शीघ्र शीघ्र। इधर उधर मत देखो, समय मत खाओ। दिन पर दिन काल तुम्हारे अधिकाधिक निकट आता जा रहा है। ये सोचकर निठल्ले मत बैठे रहो कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। ध्यान रखो, ऐसा करने से कुछ भी ना हो सकेगा।
2: आगे वे और भी उदाहरण देते हुए कहते हैं,
3: ए नवयुवकों, मैं गरीबों मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और अथक प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें सौंपता हूं। जाओ, इसी क्षण जाओ और उन पार्थ सारथी के मंदिर में जो गोकुल के दीन दरिद्र ग्वालों के सखा थे, जो गोहक चांडाल को भी गले से लगाने से न हिचके, जिन्होंने अपने बुद्धावतार में अमीरों का न्योता अस्वीकार कर एक वीरांगना का न्योता स्वीकार किया और उसे उबारा, जाओ उनके पास, साष्टांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महाबलि दो, अपने जीवन की बलि दो उन दीन पतित और उत्पीड़ितों के लिए जिनके लिए भगवान युग युग में अवतार लिया करते हैं और जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हैं।
0: जनता जनार्दन की निष्काम सेवा को ईश्वर की सच्ची पूजा बताते हुए उन्होंने कहा था,
3: सारी उपासना का सार है पवित्र होना और दूसरों की भलाई करना। जो शिव को दीन हीन में, दुर्बल में और रोगी में देखता है, वही वास्तव में शिव की उपासना करता है। और तो शिव को केवल मूर्ति में देखता है, उसकी उपासना तो केवल प्रारंभिक है। जो मनुष्य शिव को केवल मंदिरों में देखता है, उसकी अपेक्षा शिव उस व्यक्ति पर अधिक प्रसन्न होते हैं जिसने बिना किसी प्रकार जाति, धर्म या संप्रदाय का विचार किए एक दीनहीन में शिव को देखते हुए उसकी सहायता और उसकी सेवा की है।
0: नारी जाति का निरादर भी देश के पतन के प्रमुख कारणों में से एक है। शक्ति स्वरूपा नारी का सम्मान न करने के कारण ही ये देश हजारों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा है। नारी उत्थान के द्वारा देश के नव जागरण की संभावना पर जोर देते हुए स्वामी जी ने कहा,
3: सभी उन्नत राष्ट्रों ने स्त्रियों को समुचित सम्मान देकर ही महानता प्राप्त की है। जो राष्ट्र स्त्रियों का आदर नहीं करते, वे कभी ना बड़े ही हो सके हैं और ना भविष्य में कभी होंगे। यथार्थ शक्ति पूजक तो वो है जो जानता है कि ईश्वर में सर्वव्यापी शक्ति है और जो स्त्रियों में इस शक्ति का प्रकाश देखता है। अमेरिका में पुरुष अपनी महिलाओं को इसी दृष्टि से देखते हैं और उनके साथ उत्तम बर्ताव करते हैं। इसी कारण वे लोग सुसंपन्न हैं, विद्वान हैं, इतने स्वतंत्र और शक्तिशाली हैं। हमारे देश के पतन का मुख्य कारण यह है कि हमने शक्ति की इन सजीव प्रतिमाओं के प्रति आदर बुद्धि नहीं रखी।
2: शक्ति के अप्रतिम संदेशवाहक स्वामी विवेकानंद के ये विचार आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण, प्रासंगिक तथा नवजीवन का संचार करने वाले हैं जितने की पहले थे। आज भी वे राष्ट्र को उत्थान की एक नई दिशा देने में समर्थ हैं।
0: स्वामी जी पूर्ण विकसित पौरुष से संपन्न थे, उनके रग रग में योद्धापन भरा था, इसलिए वे शक्ति के उपासक थे और यही कारण है कि उन्होंने अपने देशवासियों का उत्थान करने के लिए वेदांत की एक नवीन व्यवहारिक व्याख्या दी। वे सदैव कहा करते थे, केवल शक्ति ही उपनिषदों का संदेश है। उन्होंने चरित्र निर्माण पर सर्वाधिक बल दिया था।
2: एक अन्य व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा था,
3: अन्य जिस चीज की हमें सर्वाधिक जरूरत है वो है एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता। एकता में ही शक्ति है और जब तक हम एक साथ काम करना नहीं सीखेंगे तब तक आवश्यकता अनुसार कुछ कर नहीं सकेंगे। हम भारतवासी आत्मशक्ति में विश्वास खो बैठे हैं और इसलिए हम कुछ भला या महत कार्य नहीं कर पाते। वस्तुतः यही हमारा एक शोचनीय दोष है।
0: आध्यात्मिक ढोंग का तो स्वामी जी में नाम तक न था, ये चीज उन्हें बिल्कुल असह थी। प्रच्छन्न धार्मिकों से वे कहा करते थे, मुक्ति गीता के द्वारा नहीं, फुटबॉल खेलने से आएगी। वेदांती होकर भी वे भगवान बुद्ध के बड़े भक्त थे। एक दिन वे अत्यंत उत्साहपूर्वक बुद्ध देव के बारे में बोल रहे थे कि बीच में ही कोई पूछ उठा, स्वामी जी क्या बौद्ध हैं? सुनते ही स्वामी जी के मन में भावुकता उमड़ आई और वे रुंधे कंठ से कह उठे,
3: क्या मैं बौद्ध? मैं तो बुद्ध के दासों का भी दास हूँ।
2: भगवान बुद्ध का प्रसंग आते ही वे अत्यंत विनम्र हो जाते थे और कहते थे,
3: शंकराचार्य की मेधा और बुद्ध देव के हृदय को हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा।
0: इसी प्रकार जब एक बार वे ईसा मसीह पर व्याख्यान दे रहे थे तो किसी के प्रश्न करने पर वे गंभीर हो उठे और फिर अपनी मधुर वाणी में बोले,
3: मैं नाजरथ के ईसा के समय उपस्थित होता तो अपने आंसुओं से नहीं वरन अपने हृदय के रुधिर से उनके चरण पखारता।
2: अपने दीन दुखी स्वदेशवासियों के प्रति उनका प्रेम सागरमय अथाह था। आपको उनका वो संदेश स्मरण ही होगा। कहो बंधुओं, नग्न भारतवासी, अपड़ भारतवासी, सर्वहारा भारतवासी, मेरा भाई है। जोर से पुकार कर कहो कि भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है, और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मेरी दुर्बलता और काप पुरुषता को दूर कर दो माँ, मुझे मनुष्य बनाओ।
0: स्वामी विवेकानंद एक महान विभूति थे। कहते हैं कि आज के जमाने में जो समस्याएं हैं उनके उत्तर स्वामी जी की शिक्षाओं में प्राप्त होते हैं। स्वामी जी के जीवन तथा उपदेशों से केवल इस देश को ही नहीं बल्कि सारे संसार को केवल आज ही नहीं बल्कि हमेशा फायदा पहुंचता रहेगा।
2: जब स्वामी जी पैदा हुए थे उस वक्त इस देश की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में कुरीतियां थी, धर्म में बहुत से अंधविश्वास पैदा हो गए थे, धर्म बड़ा तंग हो गया था। स्वामी जी ने एक बार कहा था कि हमारे देश में हमारे धर्म और समाज के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। इन दीवारों को हमें तोड़ना है। उन्होंने कहा था, जनता से प्रेम ही असली जीवन है, दूसरों से नफरत मौत है। उन्होंने कहा था, उदार होना जीवन है, तंग होना मौत है।
0: लोगों ने इसका अर्थ ये बताया कि स्वामी विवेकानंद का पवित्र और शांत हृदय भगवत हृदय के साथ एकाकार हो गया था, इसलिए वे सर्वभूतों के प्रति सहानुभूति संपन्न हुए थे। हम लोगों को भी उसी पथ का अनुसरण करना होगा।
1: ठाकुर के चरणों में बैठकर ही स्वामी जी यह समझ सके थे, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। कारण जो कुछ है सो तू ही है। अपनी इस विराट अनुभूति के पश्चात ही स्वामी जी ने कहा था, चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो, मैं अपने जगत के सभी दुखी दरिद्रों की सेवा के लिए हजारों बार जन्म लेने को तैयार हूं।
2: भविष्य दृष्टा स्वामी जी ने काफी वर्षों पूर्व ही कह दिया था कि चीन वासियों में से एक विशेष जन जागरण आएगा और वे लोग भारत वर्ष पर भी आक्रमण कर उसे वशीभूत करने का प्रयास करेंगे। जिन स्वामी जी ने चीनियों द्वारा भारत वर्ष पर आक्रमण की बात कही है, उन्होंने ही फिर योग दृष्टि से अपनी मातृभूमि के महाजागरण का दर्शन करने के बाद इस बारे में भविष्यवाणी की है।
3: हमारी भारत माता अपनी सुदीर्घ घोर निद्रा से जाग रही है। किसी में भी ये क्षमता नहीं कि इस जागरण को रोक सके। जागृत भारत फिर सोने वाला नहीं, बाहर की कोई भी शक्ति उसे दबाकर ना रख सकेगी। भगवान का अलंघ्य आदेश है कि इस बार भारत वर्ष का अभ्युदय अवश्यम भावी है। देश की दुर्गति प्राप्त जनता के सुख समृद्धि के दिन आसन्न हैं।
0: भारतवर्ष के अधःपतन का दर्शन कर वे अपनी अभूतपूर्व भाषा में कहते हैं,
3: हम लोग आलसी हैं, कर्म विमुख हैं, एकता साधन में अक्षम हैं, भ्रातृ प्रेम से रहित हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या व घृणा करती हैं। यही हमारी वर्तमान शोचनीय अवस्था का स्वरूप है।
0: फिर स्वामी जी हमारे पुनरुद्धार के लिए इन उपायों का निर्देश कर जाते हैं। पहला निर्देश,
3: हमें धर्म के ऊपर प्रतिष्ठित होना होगा। किसी भी सामाजिक या राजनैतिक मतवाद का आंदोलन करने के पूर्व देश को आध्यात्मिकता की रीढ़ से प्लावित कर दो। आत्म तत्व का प्रचार करने के बाद लौकिक या तुम्हारी इच्छा के अनुरूप जो कोई भी ज्ञान अपने आप आएगा। धर्म समन्वय की स्थापना ही भावी भारत के गठन की पहली सीढ़ी है।
2: दूसरा निर्देश,
3: शक्ति ही हमारी एकमात्र आवश्यकता है। आत्मा अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। उठकर खड़े हो जाओ और अपना स्वरूप व्यक्त करो। आत्म चेतना जागृत होने पर देखोगे कि क्षमता, महिमा, निष्ठा, पवित्रता आदि जो कुछ भी वांछनीय है सब अपने आप ही आ जाएगी।
0: तीसरी बात उन्होंने कही थी कि
3: शुद्ध देशभक्तों का गठन करना होगा। लौह के समान दृढ़ पेशी, इस्पात के समान कठोर स्नायु और प्रचंड इच्छा शक्ति से संपन्न बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है।
2: शिक्षा के विषय में कहा कि
3: हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिसके द्वारा चरित्र गठन हो, मन की शक्तियों में वृद्धि हो, बुद्धि बल का विकास हो और व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा हो सके। ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बल आए और मनुष्य निर्माण हो। पाश्चात्य विज्ञान के साथ वेदांत का समन्वय और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और आत्मविश्वास, ये शिक्षा के मूल मंत्र होंगे।
0: उनका पांचवा संदेश था, जन साधारण को सर्वांगीण उन्नति करनी होगी। एक शिक्षायतन के द्वारा गण उन्नति का भाव प्रचारित करना होगा। उसमें शिक्षा प्राप्त प्रचारक गण गरीबों के द्वार पर लौकिक व आध्यात्मिक शिक्षा का वितरण करेंगे। जो शिक्षा और संस्कृति उच्च वर्ग की संस्कृति का स्रोत है, उसे निम्न श्रेणियों में आत्मसात कराना होगा। वर्ण साम्य लाने का यही उपाय है।
2: और अंत में उन्होंने बार बार नारी शिक्षा की बात कही, उन्हें ऊपर उठाना होगा।
0: स्वामी जी की इच्छा थी कि भारत के आध्यात्म विज्ञान और पश्चिम के भौतिक विज्ञान के समन्वय से प्राच्य और पाश्चात्य के बीच एकता स्थापित हो। भारत के धर्म प्रचारक गण पाश्चात्य देशों में जाएंगे और वहां से पाश्चात्य विज्ञान के शिक्षा के फल भारत में लाएंगे।
2: भगवान श्री रामकृष्ण और श्री माँ द्वारा प्रदर्शित मत का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने मठों की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसीलिए उन्होंने बेलूर मठ स्थापित करते समय एक स्त्री मठ स्थापित करने की योजना बनाई थी। माँ शारदा देवी की जन्म शताब्दी के वर्ष 1954 में उनकी ये इच्छा पूरी हुई। स्वामी जी चाहते थे कि सन्यासियों की तरह सन्यासिनियां भी सांसारिक काम वासना को त्याग कर राष्ट्र हित के कार्यों में, विशेषकर नारी शिक्षा के विस्तार में आत्मनियोग करें।
0: स्वामी जी के भारत को यदि एक शब्द में व्यक्त करना हो तो वे थी एक जागृत देवी। उन्होंने भारत माता की चेतनता का बोध किया था। राजपुताना के अपने एक मित्र को स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा था, मेरी इच्छा है कि मैं अपना समस्त जीवन अपने धर्म तथा अपनी मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दूं।
2: उन्होंने एक व्याख्यान में समझाया था,
3: यदि पृथ्वी में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति के भीतर क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से यही कहूंगा कि वो हमारी मातृभूमि भारत वर्ष ही है।
0: और भी एक महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने कही है, हमारे ये दीन दुखी देशवासी भाई अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं, आत्मविश्वास खो चुके हैं। इसे दूर करना होगा, उन्हें बताना होगा,
3: भाइयों भाइयों, तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारे भीतर भी अनंत शक्ति है, तुम्हारी उन्नति की अपार संभावनाएं हैं। उठो, जागो, स्वयं पर विश्वास करो और उन्नत मस्तक होकर सभ्य और शिक्षित लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर देखो। महानता और सफलता किसी वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है। विश्वास रखो, लगन और परिश्रम के द्वारा तुम भी महानता और सफलता प्राप्त कर सकते हो।
2: आप और हम सब जिन्होंने स्वामी जी को अपना जीवन आदर्श चुना है, उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि राजनीति हमारे समाज की मौलिक समस्याओं को हल नहीं कर सकती। हमारी समस्याओं के समाधान का, हमारी उन्नति का उपाय है समाज के निम्नतर लोगों को ऊंचा उठाना, उन्हें शिक्षा देना, उन्हें व्यक्तित्ववान बनाना, और इस कार्य का दायित्व आपको और हमें अपने कंधों पर लेना हो।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: मुकाबला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ, अक्षय निधि आपको सुनवाएंगे 7:10 से। भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत में 7:20 से। दामोदर हरी चापेकर की जयंती पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा 8 बजे से। बाल सभा आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। प्रातः 9:30 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम। देश के संस्थान ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 10 बजे से। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा केशव चंद्र सेन पर।

परिक्रमा सुनिएगा 10 बजे से, माफ कीजिएगा, परिक्रमा सुनिएगा 11 बजे से, और 11:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। ये थी जानकारी हमारे कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।